नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58:45 हो चुके हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनेपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजय

0: पुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जाँच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। खेती की बातें, कृषि संबंधी कुछ जानकारी आइए प्राप्त करते हैं इस कार्यक्रम में। दलहनी खेती से मृदा उर्वरता में वृद्धि, संकलन और वाचन स्वर प्रतिमा वर्मा का है। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें दलहनी फसलों से मृदा में सुधार की। जी हां किसान भाइयों, दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तपन, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। इनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण और मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम भी कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6 से 8 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि गोंद की तरह मृदा कणों में स्थिरता प्रदान करती है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा जल संचयन में वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का और ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट

0: और रोगों का प्रकोप अधिक होने लगता है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है। कीट और रोगों के रोगजनकों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार दलहनी फसलें की खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति।
1: कृषि संबंधी जानकारी अभी प्राप्त कर रहे थे आप खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन सृजनात्मकता, संकलन और वाचन स्वर है शर्मिला वर्मा का।

रचनात्मकता वह स्थिति है जिसके तहत मनुष्य की ऐसी सकारात्मक सोच और क्षमता उजागर होती है जो न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज के लिए हितकारी होती है। अक्सर यह माना जाता है कि लेखक, पत्रकार, चित्रकार, आविष्कारक ही सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, पर जिस व्यक्ति के क्रियाकलाप लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं उसका स्वभाव रचनात्मक ही होता है, जबकि नकारात्मक सोच का व्यक्ति सुचारू रूप से चलने वाले कामों में हमेशा रोड़े ही अटकाता है। क्रिएटिविटी किसी भी समस्या को सुलझाने का नैसर्गिक तरीका है। सृजनात्मकता जन्मजात प्रतिभा कम, निरंतर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने की प्रक्रिया ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, सृजनात्मक क्षमता हरेक के अंदर होती है, लेकिन उसको मूर्त रूप केवल पुरुषार्थी ही दे पाता है। रचनात्मक व्यक्ति के चित्त में शांति विद्यमान रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के लिए काम करता है। सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करने से उसकी आत्मबल में वृद्धि होती है। अंतःकरण में अस्थाई शांति का वास होता है। क्रिएटिव व्यक्ति के विचार हमेशा सात्विक और पवित्र होते हैं, जिससे उसके हृदय में उद्विग्नता पनप नहीं पाती। आत्मद्वंद से बचना हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति कामना करता है कि उसके जीवन में शांति आए। इसके लिए उसे अपने हितों की पूर्ति की बजाय दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मकता का सहारा लेना होगा। शांतिमय जीवन के लिए रचना बेहद जरूरी है। क्रिएशन जीवन का ऐसा सूत्र है जो चित्त को समुद्र की तरह शांत कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि उसने जीवन में लेश मात्र भी सृजन नहीं किया है।

जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मकता मौलिक और कल्पनाशील लेखन और यह उसी के अंदर होती है जिनके अंदर नए नए विचारों को जन्म देने और समाज को जोड़ने में जिनके विचार अधिक होते हैं, और यह भावनाओं को उभारती है, नई कलाओं को रास्ता दिखाती है और रोज़गार के अवसर भी प्रदान करती है। जी, समाज को जागरूक करना, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, नए शब्दों का निर्माण, सौंदर्य और भावनाएं, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, ये सब बातें सृजनात्मक होती हैं। इससे सोचने और लिखने की क्षमता बढ़ती है।

और आज के दौर में जिसके अंदर सृजनात्मकता की भावना है, जिसके अंदर विचार हैं, शब्दों की भंडार हैं, वह अपनी भावनाओं को अच्छे रूप से प्रकट कर सकता है, वह लेखन का कार्य कर सकता है और बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर सकता है जिसमें नवाचार की ज़रूरत है। जी हाँ, और ऐसा कुछ नया अनोखा सोचने की शक्ति प्रदान होती है। इसलिए कल्पना करना, उसे शब्दों में ढालना, उसे लेखन के रूप में देना, ये सब कुछ जो व्यक्ति करते हैं उन्हें बहुत कुछ, उनकी भावनाएं उभर कर सामने आती हैं और समाज को भी बहुत कुछ मिलता है। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन और अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो आइए सुनते हैं कुछ भजन। सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं शिव जी के भजन के साथ, क्योंकि वातावरण बिल्कुल अभी शिवमय हो चला है, श्रावण का पावन महीना है। भक्त अपने अपने आस्था के अनुसार अपने भोले बाबा को मनाने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भोले के एक भक्ति गीत के साथ।

0: इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको डॉक्टर अजय कुमार से ली गई भेंटवार्ता सुनवाते हैं। भेंटवार्ता का विषय है हृदय रोग कारण एवं सावधानियां। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार लाल और पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता है आकाशवाणी रांची केंद्र के सौजन्य से प्राप्त।
1: आजकल की जिंदगी पर हम थोड़ी सी नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित दिखता है। हमारा जीवन शैली भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, हमारे खान पान का तरीका बदल गया है और हमारे उठने बैठने के तरीके में भी बहुत ही बदलाव दिखता है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको इसका पता भी नहीं लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्वागत है। सबसे पहले हम जाने कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
2: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुँचाता है।
1: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका उपचार कर सके।
2: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशन, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन है।

0: ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है या फिर कोई बेल्ट से जोर से कस दिया है छाती को। इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम लोग कोई एक्सर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
1: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लग जाता है।
0: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं। एक्सर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है, और वो भी कुछ देर के लिए होता है। जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता। जो पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता, और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पे होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2-3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय। बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
0: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवरवेट है, या जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही हार्ट की गड़बड़ी आई हुई है, ये उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है। और इसमें हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है। यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप स्मोकिंग ना करें। जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, वज़न कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है, तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं। जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसको छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं। इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स, जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम लोग चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिए, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको भी चाय जैसा हम लोग पी सकते हैं। तो ये तो सावधानी, ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्या अच्छे खाने खा सकते हैं, हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसको दूर रखने के लिए, या जो भी पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है वो कोशिश करें कि एनिमल फैट ना खाएं। एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग, उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली, तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं। हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो दो

0: तीन दवाइयां हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो दो तीन दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके तो ये रखता है। जैसे कि अर्जुना है, ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है, ये होम्योपैथी में भी होता है। ये अर्जुना एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल को उबाल के पीने के लिए तो मैं पहले भी एडवाइस किया था। यही चीज़ हमारे होम्योपैथी में भी टिंचर फॉर्म में होता है। इसका डोज हम लोग लेते हैं 20 बूंद तीन बार एक चौथाई कप पानी के साथ। दूसरी दवा है कैक्टस, ये भी हार्ट की टॉनिक ही है और हार्ट का फंक्शन को ठीक करता है। ऐसे दो तीन और दवाइयाँ हैं जैसे।
1: हृदय रोग कारण और सावधानियां, अभी आप डॉक्टर अजय कुमार से ले गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत बांसुरी वादन। कलाकार होंगे KS गोपाल कृष्णन, राग रूपकम। कानून की बात सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:45 पर। 8 हम शामिल होंगे समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, जहां से आप हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर प्रसारित होंगे। सुबह 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से प्रस्तुत करेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू यह कार्यक्रम सुन पाएंगे आप सुबह 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे श्री प्रशांत गौरव। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने सुबह 9:30। सुबह 10:00 एक बार फिर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए और 10:10 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम शाम के 5:29 तक। शाम के 5:30 पर पुनः हम उपस्थित होंगे अपने स्टूडियो में सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की जानकारी के साथ।

शाम 5:35 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के तहत चर्चा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार करें मोबाइल का प्रयोग। और इसी कार्यक्रम में चर्चा होगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भारत छोड़ो आंदोलन। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं सुनेंगे आप वार्ता। वार्ताकार होंगे आदिति त्रिवेदी। पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 से सुनेंगे आप किसान वाणी कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में अरहर में कीट प्रबंधन पर। आज की बात होगी कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियों पर। और इसी कार्यक्रम में सुनेंगे आप पूर्व प्रसारित ली गई भेंटवार्ता। विषय उद्यान एवं वानिकी। भेंटवार्ता कर होंगे प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की। बातचीत करेंगे संतोष कुमार। सब्जियों की खेती आय का साधन आज की नसीहत के तहत। और आज का मौसम, आज का बाजार भाव भी जानेंगे आप इसी कार्यक्रम में। शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। 7:00 प्रादेशिक समाचार का समय और जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 पर स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे गीत हौसलों के प्रोग्राम स्वरांजलि के तहत।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में आइए अब आपको सुनवाते हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं KS गोपाल कृष्णन। राग रूपकम।

0: इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का रागरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र में।
1: या ये कह सकते हैं कि इसकी पूरी मान्यता है, सरकारी मान्यता प्राप्त है। अब प्रश्न जो हमारे मन में, हमारे श्रोताओं के मन में उठ रहा होगा कि किस तरह के विवाद मीडिएशन के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, क्या कि जो लड़ाइयां होती है या झगड़े होते हैं वो कभी कभी काफी गंभीर रूप ले लेते हैं, तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसे मीडिएशन से सुलझाया जा सकता है?
2: आज के समय में जब भी किसी तरह का विवाद होता है तो आप देखते होंगे जो भी हमारे समाज गांव में लोग रह रहे हैं, पहले कन्फ्यूजन ये होता है कि किस मामले में हम मध्यस्थता करा सकते हैं, किस किस मामले में नहीं करा सकते, बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ही बताऊंगा कि आप किसी भी तरह का सिविल मुकदमा हो, चाहे सिविल मुकदमा किसी भी तरह का हो, उसमें मध्यस्थता होगा, मेडिएशन उसमें होंगे, उसमें सुलह होंगे। उसके अलावे जो भी जो फौजदारी मुकदमा होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन क्रिमिनल केसेस में जो पीटी नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उसमें हमारे सीआरपीसी जो हमारा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से नेचर के केसेस हैं जो कंपाउंडिंग है। एक वर्ड हम लोग जो लॉ टर्म में यूज करते हैं, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब जिसको सुलह किया जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो वैसे केसेस का भी हम लोग क्रिमिनल केसेस में भी सुलह कर सकते हैं। उसके अलावे अभी आज के दिन में बहुत ज्यादा वैवाहिक समस्याएं जो आती हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो डिस्प्यूट्स हैं, कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वैसे मामले को भी हम जो है इस पे मध्यस्थता के साथ जोड़कर और उसको हम सुलह कर सकते हैं। उसके अलावे मैंने आपको बताया सिविल, जितने भी सिविल नेचर के केसेस हैं उस सारे केसेस को, लैंड डिस्प्यूट से मामला संबंधित हो, अतिक्रमण से मामला संबंधित हो, आपका वो लैंड एक्विजिशन वगैरह मामला हो, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको आप जो है मध्यस्थता के माध्यम से लाकर सुलझा सकते हैं।
1: और झारखंड में अगर देखा जाए तो खास करके ग्रामीण इलाकों में जमीन संबंधी बहुत सारे लिटिगेशन हैं, बहुत सारे केसेस हैं, और जो पक्ष होते हैं दोनों उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाए, तो शुरू तो कर देते हैं, केस कर देते हैं, कोर्ट का आना जाना ये सब शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये उन पर बहुत भारी गुजरता है, तो उनके लिए ये मेडिएशन का रास्ता मैं समझता हूँ कि बहुत
2: बहुत
1: उपयुक्त है,
2: उपयुक्त है, लाभकारी है। और हाँ,
1: और यहाँ एक बात जो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि अगर दो पक्ष है, उसने मान लिया कि कोई एक पक्ष चाह रहा है कि किसी तरह से ये मामला निबट जाए, अब कोर्ट कचहरी ज्यादा ना करना पड़े, तो वैसी स्थिति में क्या एक पक्ष आवेदन दे सकता है मीडिएशन के लिए? मीडिएशन कैसे संभव है, जो दोनों पक्षकार के मान जाने पे ये शुरू होगा, या एक पक्षकार अगर चाहता है तो भी मीडिएशन की प्रक्रिया?
2: देखिए, सामान्यता क्या होता है कि एक पक्ष भी आवेदन देते हैं लेकिन उस पे मीडिएशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता।
1: अच्छा।
2: क्योंकि मध्यस्थता का मतलब ही होता है कि दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट्स है, दोनों पार्टी सामने आए, अपना कंसेंट दे कि हाँ मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। सॉल्व होना, रिजॉल्व होना वो अलग विषय है, लेकिन एक प्रक्रिया में शामिल होना ये अलग पहलू है। प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दोनों पक्षों को सामने आने की आवश्यकता है। कोर्ट में जाने से पहले क्या होता है कि उसमें एक आवेदन जो संबंधित जो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हर जिला में स्थापित है इसका ऑफिस है, या राज्य स्तर पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिसको झालसा के नाम से भी जानते हैं, आप वहां पर भी जाकर एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरा ये मामला है, मैं न्यायालय में नहीं जाना चाहता, मुझे लिटिगेशन में ही इसका सेटलमेंट चाहिए। तो क्या होता है, फिर दूसरे पक्ष को उसमें नोटिस भेजा जाता है, दोनों पक्ष आते हैं, दोनों पक्षों के साथ बैठने के बाद जो होता है उसमें जो भी विधिक सेवा प्राधिकार जो है, लाइक जिला में है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, आपके राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उसमें मेडिएटर नियुक्त करते हैं, और जो मेडिएटर नियुक्त होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
1: अच्छा।
2: इसमें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो मेडिएटर जो एक्सपर्ट मेडिएटर होते हैं, जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट टॉपिक है उसके जानकार होते हैं, वैसे लोगों को ही हम लोग मेडिएटर में नियुक्त करते हैं उस केसेस में, और वो केस में वो न्यूट्रल पर्सन की तरह दोनों पक्षों से बात करके और कोशिश करते हैं कि ये प्रिलिटिगेशन मामले पे ही मामला का निष्पादन हो।
1: अच्छा, ये जो मेडिएशन की पूरी प्रक्रिया है तो क्या ये बंद कमरे में, यानी कि गोपनीय होता है या ओपन होता है, सब लोग इसे सुनते हैं?
2: नहीं नहीं, ये पूरी तरह से गोपनीय होता है। कहा भी जाता है कि मध्यस्थ, इसलिए बहुत लोगों का ये डर होती है कि हम लोग मध्यस्थता करें, हमारा हम जो बातें बता रहे हैं मीडिएटर को या हम अपनी बातें रख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं रिवील हो जाए, हमारी गोपनीयता कहीं तो ऐसा नहीं भंग हो जाए। तो मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि किसी भी तरह का कोई इसमें गोपनीयता भंग नहीं होती, पूरी पूरी तरह से ये गोपनीय होती है। आपके द्वारा बताया गया जो भी बातें होता है वो मेडिएटर तक सीमित होता है। सिर्फ इसमें आपके दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट्स होता है उसमें कोशिश की जाती है कि कैसे उसको रिजॉल्व।
1: मध्यस्थता के दौरान मेडिएशन में अगर एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें एक पक्षकार वो एग्री नहीं है, वो उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वैसी स्थिति में आगे क्या प्रक्रिया?
2: देखिए, अगर
1: दोबारा न्यायालय जाएगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल, उसको राइट है, न्यायालय जाने से कहीं भी किसी को बाधित नहीं किया गया है। बस एक प्रक्रिया है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पार्टी आपस में आने के बाद अगर उसको सेटल कर लेते हैं तो एक न्यायिक प्रक्रिया में जाने से बच जाते हैं, उनका जो समय है। ऐसे भी अभी कई करोड़ों केसेस न्यायालय में पेंडिंग है, तो न्यायालय भी इसको ADR सिस्टम जो हमारा जो मैकेनिज्म है उसको लाने की कोशिश किया ताकि मैक्सिमम लोग एक बार मध्यस्थता की तरफ, भले भले कोर्ट बाद में मध्यस्थता पहले, न्यायालय भी आज के यही डेट में यही कह रही है। तो जितना जल्दी मध्यस्थता में जाएंगे सेटलमेंट होगा तो एक तो आपकी समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, प्लस तुरंत निपटारा हो जाएगा उसमें, और उसकी मान्यता उतनी ही होती है जितना एक को न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित की जाती है।
1: दीपक जी, जैसे कि अब तो हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, फिर भी मेडिएशन के बारे में अगर कोई अद्यतन जानकारी, जो लेटेस्ट कोई ऐसी सूचना हो जो आप श्रोताओं को देना चाहें।
2: अभी मेडिएशन को लेकर, मध्यस्थता को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक कैंपेन चली है, ड्राइव चली है, जिसको हम लोग 3.0 या 3.0 के नाम से जानते हैं। ये जो मध्यस्थता है इसमें पूरे भारतवर्ष में जो भी केसेस न्यायालय लेवल पे पेंडिंग है और जिन केसेस का हम लोग जो है मध्यस्थता के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं, विकल्प निकाल सकते हैं, वैसे केसेस का चिन्हित किया जा रहा है। और इससे जस्ट पहले मेडिएशन 2.0 चला था जो पूरे भारतवर्ष में चला था, झारखंड में भी पूरी तरह से हर राज्य हर जिले में चले, अब काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आया। मध्यस्थता के माध्यम से बहुत लोग अपने केसेस का निपटारा किए, कई हजारों में, मतलब लगता है मुझे कि 5,500 केसेस सिर्फ एक एक कैंपेन में सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं। तो अभी नया कैंपेन लॉन्च हुआ है, इसमें भी जितने भी न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उसके अलावा अन्य भी मामले जो हैं वैसे मामले को चिन्हित करके उसमें मेडिएटर नियुक्त किया जा रहा है। अगर आप सभी का भी कोई भी मामला कोर्ट में लंबित है जो लगता है कि एक मध्यस्थता के माध्यम से उसको सुलह किया जा सकता है, तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, एक बार आप लोग अपने अपने न्यायालय पे जाएं, अपने जो विद्वान अधिवक्ता से भी बात करें, और जो केसेस लगता है कि मध्यस्थता के माध्यम से सुलह हो सकता है उसमें भरपूर प्रयास करें, क्योंकि इसमें आपके पैसे समय की भी बचत है। अभी एक और भी हमारा कैंपेन चल रहा था जो 21, 22, 23 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसका मेडिएशन के माध्यम से सेटलमेंट होना है, जिसमें जो भी मामले सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे झारखंड के लिए हमारे राज्य में 553 केसेस को चिन्हित करके भेजा कि ये केसेस का हम लोग जो है निपटारा किया जा सकता है अगर पार्टी दोनों एग्री हो। इसमें हम लोगों ने संपर्क किया, बहुत अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी केसेस हैं, प्राइवेट केसेस भी हैं, और इसका जो हम लोग मेडिएशन अभी भी प्रक्रिया चल रही है और 21, 22, 23 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन केसेस का भी निपटारा किया जाएगा जिसमें पार्टी एग्रीड हो जाते हैं।
1: समय की पाबंदी के कारण हम इन बिंदुओं को शायद शामिल नहीं कर पाए हों इस कार्यक्रम में, लेकिन एक चीज़ है कि मध्यस्थता जो भी कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया, उससे बेहतर है खर्च की दृष्टि से, समय
2: की दृष्टि से।
1: तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को मध्यस्थता के बारे में आप क्या अपील करना चाहेंगे?
2: मैं सभी श्रोताओं से यही अपील करूंगा, देखिए मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष का विन विन सिचुएशन होता है, ना कोई पक्ष हारते हैं ना कोई पक्ष जीतते हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह का जो विवाद हो जो मध्यस्थता के माध्यम से लाया जा सकता है, आप पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाएं और मध्यस्थता की प्रक्रिया से आए, इसमें आपकी समय पैसे की बचत होगी, त्वरित आपको उसमें न्याय मिलता है। दोनों पक्षों के बीच का जो विवाद होता है वो बाद में जाके एक सौहार्द में बदल जाता है, आपसी मतभेद नहीं रहता, आप मन मुटाव नहीं रहता। मध्यस्थता के माध्यम से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो, उस चाहते हो कि इसकी ज्यादा जानकारी हो तो नालसा का एक टोल फ्री नंबर है 15100, किसी भी तरह का विधिक सहायता आपको चाहिए, मध्यस्थता से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं।
1: दीपक कुमार साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को मेडिएशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके क्या क्या लाभ हैं, क्यों हमें मेडिएशन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कानून की बात, जिसमें आज श्री दीपक कुमार साहू, जो कि झालसा के अवर सचिव हैं, उन्होंने जानकारी दी मध्यस्थता विवाद सुलझाने का एक बेहतर तरीका। इनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। प्रस्तुति भी थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम की 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: जिद्दी। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर मैंने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित। और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम्प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
4: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
2: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई

0: देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
6: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
7: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
8: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणी अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों

0: प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। उससे पहले सुनिए यह संदेश।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की वार्ता, अभी जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता की जांच तेज, सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को 10 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान, कहा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी। कोल्हान के जंगलों में सक्रिय 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने 2 महिला नक्सलियों के साथ चाईबासा में किया आत्मसमर्पण। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कल देर शाम सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। इस बीच मामले की जांच और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कल राज्य सरकार और छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा।
2: छात्रों के साथ हम लोगों ने तनाव वार्ता को किया, छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर।
1: छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
3: हमारी जो भी प्रमुख मांग थी एकत्र करके विस्तार पूर्वक हमने बताया। हमारी प्रमुख मांगे को ध्यान से सरकार के डेलीगेट्स में जो भी मंत्री थे उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी प्रमुख मांगे हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों ने यह बोला कि जब तक हमारी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाती है हम लोग की आंदोलन जारी रहेगी।
1: इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 13 अगस्त तक युवाओं के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को और तेज करेंगे।
4: झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा।
0: जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच तेज करते हुए सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद को समन भेजा है। 10 अगस्त से इनसे पूछताछ होगी। पूर्व अध्यक्ष एलबी ख्यांगते से मिले इनपुट के आधार पर सीआईडी ने जांच को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने का

0: प्रयास तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जंगलों के घटने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ मानवीय छेड़छाड़ का गंभीर असर इंसानों और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण से खिलवाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी।
1: जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, सब लोग पेड़ काट काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है, तो हमने सोचा कुछ लालच ही दे करके पर्यावरण को बचाने का कोशिश हो, तो हमने शहर के लोगों के लिए कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री दे। 100 पेड़ लगाओ, 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो।
0: हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड स्थित अमनारी गांव में बारिश के कारण एक पुराना मिट्टी का मकान ढहने से करीब 200 साल पुराना चांदी के सिक्कों का खजाना मिला है। मलबे से 300 से अधिक प्राचीन सिक्के बिखरे हुए पाए गए हैं। गृहस्वामी नंदकिशोर प्रसाद के अनुसार यह उनके पूर्वजों की संपत्ति है। स्थानीय प्रशासन को इस घटना की सूचना दे दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
3: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
2: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज और कल मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इस बीच देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना, नए नाम जोड़ना और एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर स्थानांतरित करना है। उन्होंने राजनीतिक दलों और BLO से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
4: 8th और 9th अगस्त को सभी बूथों में शिविर लग रहा है, सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक, जिसमें जो भी छूटे हुए मतदाता हैं जिनका नाम जोड़ा जाना है उनके लिए विशेष शिविर है। 2 दिन चलेगा, 8th से लेकर 9th तक, सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक। तो वैसे मतदाता जिनका नाम छूट चुका है या फिर वैसे युवा जो कि इस साल 1-10-2026 में अहर्ता रखते हैं, वो सभी जाकर अपना नाम वहां जुड़वाएं।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। संगठन के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमेटी सदस्य सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर ने 2 महिला माओवादियों पिंकी और 1 लाख की इनामी कोडोमुनी कोड़ा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। सोनवा निवासी सालुका कायम माओवादियों के गिरफ्तार पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा के दस्ते में सक्रिय था। उस पर IED ब्लास्ट, हत्या और रंगदारी सहित 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज

अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए नागरिकों से खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। 9वीं राज्य सब जूनियर सेपक टकरा प्रतियोगिता कल जिला स्कूल परिसर में आयोजित की जाएगी। सेपक टकरा एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष उदय साहू ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन श्रीनगर में होने वाली सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम में किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर सरकार के मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली वार्ता की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कमेटी ने मांग पत्र लिया, सीएम लेंगे फैसला। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जेटेट नहीं कराने पर शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस। दैनिक जागरण लिखता है, सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों को भेजा नोटिस, अगले हफ्ते करेगी पूछताछ। प्रभात खबर की सुर्खी है, कतरास में मिश्रण भूधसान, आधा दर्जन आवास जमीन दोज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की वार्ता, अभी जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता की जांच तेज, सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को 10 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान, कहा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी। कोल्हान के जंगलों में सक्रिय 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने 2 महिला नक्सलियों के साथ चाईबासा में किया आत्मसमर्पण। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक

0: महाकुंभ का गवाह बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों झूमर छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह कला एवं शिल्प प्रदर्शनी पुस्तक मेला स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी चित्रकला प्रदर्शनी ट्राइबल फैशन शो रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता आकर्षक हस्तशिल्प नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सबसे पहले सुनवा रहे हैं आपको यह गाना।

मित्रों, हमारे देश की बात ही कुछ अलग है। यहाँ के वादियों में, फ़िज़ाओं में एक अलग ही जोश होता है। और इस महीने की बात यदि हम करें, अगस्त महीने की, तो एक अलग ही रंग घुला होता है वातावरण में। जी हाँ, जिसमें भक्ति भी है, देशभक्ति भी है, उसके साथ साथ नया उत्साह है, उमंग है, प्रेम, चाहे रिश्ता कोई भी हो। जी हाँ, चाहे वो माता पिता के साथ संबंध हो, भाई बहन का प्यार हो, या इस देश से प्यार हो, इस प्रकृति से प्यार हो, आपसी भाईचारा हो, एक अलग ही उत्साह होता है। और हमारा देश तो वैसे भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ हर रूप, रंग, वेश, भूषा, भाषा के लोग रहते हैं, बड़े ही मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और यही विविधता सबको एक दूसरे से बांधे रखती है और एकता को प्रदर्शित करती है। चलिए सुनवाते हैं अगला।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत सारे विश्व से, सारे देशों से बेहतर है, खूबसूरत है और यहाँ की बात निराली है। जी, हमने आपको सुनवाया 10 और परदेसी बाबू फिल्म का गाना। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त निर्मला को दीजिए विदा इस कार्यक्रम से। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और दोस्तों अब समय हो चला है जोहार पलामू कार्यक्रम का, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का और संयोजन करता है प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

जोहार, नमस्कार। स्वागत है तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। आप दुनिया में जो बदलाव चाहते हो वह पहले स्वयं अपने आप में लाएं, यानी पहले खुद में लाएं, और उसके बाद ही आप दूसरों से उम्मीद करें। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि हम अपेक्षा रखते हैं औरों से, लेकिन स्वयं पर विचार नहीं करते हैं, जबकि शुरुआत स्वयं से ही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम यदि यह विचार करे जो औरों से वह चाहता है, औरों से अपेक्षा रखता है, तो बदलाव अपने आप होने लगेगा, दिखने लगेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों, अभी तो हमारी प्रकृति भी यही संदेश दे रही है और हमेशा ही देती रहती है, क्योंकि वह अपने आप में बदलाव करती रहती है। मौसम के अनुरूप वह अपने आप को ढाल लेती है जी। और अभी तो वह बिल्कुल सज धज गई है नई नवेली दुल्हन की तरह, हरी चूनर ओढ़े सतरंगी इंद्रधनुष की तरह चहुओर की आभा से आलोकित अनुपम श्रृंगार किए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सी। जी हाँ, झिलमिलाती बरसती हुई बूंदें, सरसराते वृक्षों के पत्ते, फूलों से सजी क्यारियाँ, जल से भरे सरोवर, कलकल करती नदियों की ध्वनि, एक अलग ही वातावरण और साथ ही जयघोष और कांवरियों का उत्साह भी देखते ही बनता है जी। इस श्रावण मास में श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस का समावेश एक साथ होकर एक अलग ही आनंदमय वातावरण बना देता है। तो चलिए अब एक गीत का आनंद ले जिसमें हर रंगों का समावेश है।

0: जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हैं भारतवासी और यह बात बिल्कुल सत्य है। आज है 8 अगस्त और आज की तारीख भारतीय और विश्व इतिहास में एक विशेष महत्व रखती है। आज ही के दिन सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक आह्वान किया था। जी, उन्होंने नारा दिया करो या मरो। जी, और इसके साथ ही अन्य बहुत सी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में आज के तारीख में दर्ज है। सन 1942 महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में, जो कि अब मुंबई कहलाता है, में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और आंदोलन की शुरुआत हुई। और 1956 में झारखंड और देश के तकनीकी विकास से जुड़े ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसे आज भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। सन 1988 में म्यांमार वर्मा में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दौरान सेना द्वारा हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या भी की गई। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा की आज ही की तारीख को। इस तरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो वो घटनाएं हमें बहुत कुछ बताती हैं, संदेश देती हैं, हमें सतर्क भी करती हैं और सीख भी देती हैं। इसलिए ये जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही मिलती है दोस्तों। जी हाँ, और आगे बढ़ें उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और इसी आंदोलन में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। जी, और यह प्रसिद्ध नारा था जो लोगों की जुबा पे आया और लोगों ने अपने आप को झोंक दिया आज़ादी के लिए। आंदोलन का प्रमुख कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटेन के द्वारा भारत को उसमें झोंक देना। क्रिप्स मिशन की असफलता, जिसमें राजनीतिक हल की उम्मीदें टूट गई थीं, और देश में बढ़ती महंगाई, युद्ध जनित असंतोष इसका प्रमुख कारण था। नेताओं की गिरफ्तारी, 9 अगस्त 1942 की सुबह ही अंग्रेजों ने गांधी जी और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जब शुरुआत हो गई थी आज की तारीख से तो यह तो होना ही था। केंद्रीय नेतृत्व के अभाव के बावजूद आम जनता सड़कों पर उतर आई और अगस्त क्रांति के नाम से यह आगे बढ़ा। जन आंदोलन के रूप में यह आंदोलन बढ़ता ही चला गया और कई हिस्सों में गुप्त रूप से समानांतर सरकारें भी बनाई गईं। हालांकि अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम रखना असंभव है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इस तरह से हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई आज़ादी तक पहुंची। जी, तो आज की तारीख कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और चलिए सुनवाते हैं आपको एक देशभक्ति गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और अब बातें कर लेते हैं सेहत से जुड़ी हुई। दोस्तों जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो फिर सारी बातें अच्छी लगती हैं जी। प्रकृति की खूबसूरती मन को भाते हैं, लुभाते हैं, और भक्ति की बातें हों चाहे जो भी हो, जब स्वस्थ तन होता है तभी कुछ बातें हो पाती हैं। नहीं तो अगर मन मस्तिष्क बीमार है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे पहली अहमियत होना चाहिए जी। बरसात के मौसम में, यानी ये जो मौसम चल रहा है, कभी अचानक ठंड बढ़ जाती है, कभी भीषण गर्मी महसूस होने लगती है, उमस भरी गर्मी, फिर अचानक से वर्षा हो जाना, पानी में भीग जाना, इससे कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। इस मौसम में पानी के ठहराव और नमी के कारण भी मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस तेज़ी से बढ़ते हैं, और इससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, दस्त, वायरल फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियां आम समस्या हैं लोगों के लिए। डेंगू यह साफ रुके हुए पानी में पनपने वाला

रोग होता है जो एडिज मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज़ बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। जी, जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है और तेज़ बुखार आता है। हम सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास जो पानी जमा हुआ है या घर के अंदर ही जो साफ पानी है वो अगर एक दो दिन का हो गया है तो हमें लगता है कि ये तो अच्छा पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साफ रुके हुए पानी में ही डेंगू रोग को पैदा करने वाले मच्छरों का जन्म होता है और उसके काटने से यह बीमारी होती है। मलेरिया भी एनोफिलेज मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें तेज़ ठंड लगती है, बुखार आता है। चिकनगुनिया यह भी मच्छरों से ही फैलता है, जिससे शरीर और जोड़ों में तेज़ दर्द होता है। इसी तरह से पानी और भोजन से होने वाले कई रोग होते हैं। टाइफाइड या दूषित पानी और दूषित भोजन खाने से फैलता है। इससे जो व्यक्ति होता है उसे लगातार तेज़ बुखार आता है, कमज़ोरी महसूस होती है और हैजा और दस्त भी दूषित खान पान के कारण पेट का संक्रमण होता है और उल्टी दस्त की समस्या बढ़ जाती है। पीलिया, इस मौसम में दूषित पानी के सेवन से लीवर पर असर पड़ता है और पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती है और कभी कभी तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है जो मृत्यु का कारण भी बन जाती है। और इसके साथ ही अन्य संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं इस बरसात के मौसम में, जो गंदे या बाढ़ के पानी में नंगे पैर जो लोग चलते हैं उसमें उनके शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जो लेप्टोस्पाइरोसिस कहलाते हैं। इससे संक्रमण फैल जाता है। नमी और बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण तेज़ी से फैलते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक नमी के कारण पैरों की उंगलियों और त्वचा पर चकते हो जाते हैं, जिसमें खुजली होने लगती है और ये त्वचा के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इन सब से बचाव का तरीका यही है दोस्तों, कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संभव हो तो उबला हुआ पानी पीना चाहिए इस बरसात के मौसम में, यानी पानी को उबाल कर तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घरों के आसपास साफ सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान हर मौसम में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में चूंकि बरसात होती है, कीचड़ हो जाता है और मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और घर में जब भी आप सोने जाएं मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों को भगाने वाले, मक्खियों को भगाने वाले जो भी कीटाणुनाशक होते हैं उसका उपयोग कीजिए, ताकि मच्छर मक्खियों का प्रकोप ना हो। और इस मौसम में आप बाहर का खुला हुआ खाना ना खाएं, कटे हुए फल सब्जियों का उपयोग ना करें जो काफ़ी देर से ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस भोजन का उपयोग ना करें जो खुला रखा हुआ है, क्योंकि उसमें कई तरह के संक्रमण पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, भोजन दूषित हो जाता है, ज़्यादा देर तक अगर पड़ा हुआ है तो भी वह ख़राब हो जाता है। ऐसे में आपको ताज़ा भोजन लेना चाहिए। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो गंदे पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो घर आकर तुरंत हाथ पैरों को अच्छे से साफ कीजिए और उसे पोंछकर नमी से दूर कीजिए, यानी पानी नहीं होना चाहिए शरीर में, पानी शरीर को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए सूती कपड़े से। तो इस तरह से यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस सावधानी रखने की आवश्यकता है। और फिर भी यदि आप बीमार हो जाएं तो घरेलू उपचार ना करें, अपने चिकित्सक से मिलें और बीमारी के अनुसार उसका इलाज करवाएं, तो आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे।

क्योंकि शुरुआती दौर पर होता क्या है कि जब भी हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो ये सभी के साथ होता है कि हम घरेलू उपचार करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियों में तो घरेलू उपचार काम आते ही हैं, लेकिन यदि बीमारी लगातार बनी हुई है, बुखार लगातार आ रहा है, तो फिर चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपने से कोई दवा लाकर नहीं खाना चाहिए, ये इसका ध्यान रखें। और चलिए, अब तो बातें हो गई और अब एक बार फिर हम गीत का आनंद लें।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने।

दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। जे आंख भर आई किसी से, जो मुलाकात हुई खुश्क मौसम था, मगर टूट के बरसात हुई। जी चलिए सुनवाते हैं अब आपको अगला गाना।

बेईमान मौसम से पूछो, वो कुछ हरकत कर रहा है, बताता नहीं क्या, मगर शायद वो मेरे हमसफर से डर रहा है।

पूछते थे वो कितना प्यार है तुम्हें मुझसे, लो अब गिन लो बारिश की ये जितनी बूंदे हैं। जी हो रही है बारिश पूरे शहर में, पर मन है कि जैसे भीगता ही नहीं, और भीगता है तो जैसे वो थकता ही नहीं।

मौसम है बारिश का और याद तुम्हारी आती है, बारिश के हर कतरे से आवाज़ तुम्हारी आती है, बारिश की बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में भीग जाते हैं। कभी बेपनाह बरस पड़ती है, कभी गुमसुम सी है यह बारिश, कुछ तुम सी है यह बारिश।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

0: उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निमिष को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते

अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा।

0: था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है, मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती। बात

0: को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी।
1: तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या?
0: नहीं ना, क्या ही फायदा था मित्र।

0: वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष

0: से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
2: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है। स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा।
0: उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत। राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं। इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं। राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने

जमाने के दिल जले आशक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा, कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा,
0: एक आवाज जिसमें है जोश।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग। बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे, तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं, ये किस तरह से आए थे उसकी बात करें।
1: देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर, और वक्त काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी
0: जी।
1: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूं, दो मिनट जरा पूछ।

0: कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, ये आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहाँ मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो
1: क्या सुंदर बात।
0: तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा, मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बंबई की, बंबई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे, कि बोले क्या कॉमेडी की आपने, तो धड़कने बढ़ा दी और लोगों ने इतनी प्रशंसा की। और आज भी लोग याद रखते हैं, देखो 1979 की बात है, तेज रफ्तार जमाना है
1: जी,
0: लोग कल की बात भूल जाते हैं। आज 47 साल पुरानी 47 साल पुरानी बातें हैं, और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं
1: जी, जी।
0: क्योंकि वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं
1: जी।
0: लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं
1: जी। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर।
1: हाँ नहीं देखिए, पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
0: हाँ।
1: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे।
0: हाँ हाँ।
1: कि देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे।
0: जी जी।
1: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी, तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।
0: जी जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा।
1: बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
0: ओहो।
1: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन।
0: हाँ।
1: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ।
0: जी जी।
1: 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई। सबने कहा भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहाँ पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ।
0: ओ, ओ, ओ,
1: तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां हैं। तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
0: मौके पे चौका,
1: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल ला लगा हुआ हो और वहाँ पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
0: क्या बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
1: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
0: जी,
1: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
0: हाँ।
1: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
0: जी,
1: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन

बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूँ, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं।

0: जिन्होंने ये नहीं सुना है उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाए तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है।

0: आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूँ, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी, अभी तो और बातें करेंगे। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के, आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नॉट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे
0: जी,
1: तो उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो। जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द, तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में जब इंग्लैंड गया तो उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव्स थ्रू द कवर टू फोर रन्स, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू द कवर फोर रन्स, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है।
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात।
1: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी।
1: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
0: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
1: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो
0: जी।
1: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें।

0: यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलते नहीं कि वहाँ पर जो कीथ मिलर है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में। उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना जवान लड़के लड़कियाँ आते थे कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुँह चला रहा, बहुत तेजी से मुँह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी जी।
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, और मेरे तो होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था तो उम्र में 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड of whatever you said, but whatever went into my ears was very sweet.
1: Wow, wow, wow.
0: ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज़ आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया
1: जी,
0: पहले भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा हिंदी की कमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये बहुत बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना,
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है,
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं। तो ये तमाम चीजें, और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी,
0: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की।
1: जी जी जी।
0: फिरोशा कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे, और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: तो
0: सुंदर, इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा कि इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी।
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
1: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: बात। सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे।
1: जी।
0: ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे आपके?
1: नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
0: बिल्कुल,
1: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे।
0: Yes.
1: आप वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
0: जी जी जी,
1: उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
0: जी जी,
1: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
0: जी जी, और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
1: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयन चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई
0: जी,
1: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा
0: जी,
1: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
0: जी,
1: बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
0: वाह वाह,
1: अगर किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
0: बिल्कुल,
1: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे
0: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहां थे और क्या?
1: नहीं, उस समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल।

0: भक्ति उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे।
1: जी
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी जी
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया और T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया।
1: जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है,
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना
1: जी।
0: सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है। इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल। सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों दिखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूँ
1: जी।
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी जी।
0: तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं।
1: वाह।
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम
1: जी,
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है
1: जी।
0: ये कॉलम लिखना, उससे पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं
1: जी,
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, उससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खान समझें
1: जी
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है।
1: जी।
0: तो ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी। आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायरेबल है, उसके बारे में बताइए।
0: जीवन में देखिए उत्साह
1: जी,
0: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में है तब तक आप जवान हैं। और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं है तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीज़ों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफ़ी स्फूर्तिमान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूँ। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूँ, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहाँ गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुँच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है। क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
0: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
1: नहीं, देखिए 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
0: अच्छा।
1: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है, तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
0: जी।
1: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
0: जी,
1: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या? तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी
0: जी, जी, जी।
1: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव
0: जी।
1: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस, और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी
0: जी, जी
1: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को

0: पद्मश्री मिल गया हो, उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह,
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बेहतर रहने का काम है।
1: जी आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है, और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में,
1: जी
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया।
1: जी सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया, मैं नहीं चाहता था कि ऐसे ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते,
0: धन्यवाद। ना धर्म।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा। जो

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 500

0: नेता से पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी हैं आपकी अनगिनत यादें।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे।
1: दो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे भूपिंदर सिंह की आवाज फिल्म का नाम मौसम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश पर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक, पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से

0: रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी के मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and GSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital for the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cyber security, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. 7 people were killed and 11 were injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. The accident occurred near Chalwanj Mor at Bairagarh under Tisa police station in the Churaha assembly constituency. The identities of the 7 people who lost their lives in the accident are yet to be ascertained. According to the State Emergency Operations Centre, the accident took place at around 7:15 a.m. today. Preliminary information suggests that the private bus was travelling from Bairagarh towards Chamba when it went off the road near Chal.

0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना, जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। ग्राहकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगा यूपीआई लेनदेन, भारतीय भुगतान परिषद ने डिजिटल भुगतान पर शुल्कों की खबरों को किया खारिज। सीआईएसएफ ने रामगढ़ स्थित कुज्जू के टोपा क्षेत्र में अवैध सुरंग का किया भंडाफोड़, 115 टन से अधिक कोयला बरामद। और कतरास में भारी ब्लास्टिंग से 20 फीट जमीन धंसने के कारण 10 घर जमींदोज, प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई है। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर छात्र अपना फीडबैक भेज सकते हैं।
1: छात्रों से, विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करना।
0: दूसरी ओर छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख दी हैं, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में परीक्षा सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि बड़े सुधारों की दिशा में छात्रों के सुझावों के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी।
2: जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने थे। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से राज्य नहीं संभल रहा है और ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जेपीएससी परीक्षा लेने के मामले में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
3: लगातार आंदोलनरत छात्रों के साथ आप वार्ता करें, उनकी बात सुने, क्योंकि अनशन में भी बैठे छात्र हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और निश्चित तौर से कार्रवाई हो। जो भी इसमें फंसे हैं निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का बोझ भी आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कल मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास आयोजित करेगा। सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में छात्र फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों से जुड़ेंगे। इस दौरान आदिवासी संस्कृति पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विधानसभा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निदेशक ब्रह्मा कुमारी निर्मला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उन्होंने सावन और रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को साझा करते हुए राज्य के सुख, समृद्धि, शांति और मानवीय मूल्यों को अपनाने की कामना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी

0: उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईएसएफ ने कुज्जू के टोपा क्षेत्र में सीसीएल की जमीन के नीचे बनाई गई अवैध सुरंग का भंडाफोड़ कर 115 टन से अधिक कोयला बरामद किया है। कोयला चोरों ने जमीन के भीतर रास्ता बनाकर सुरंग तैयार की थी। सीआईएसएफ ने खान एवं खनिज अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद के कतरास में भारी ब्लास्टिंग से छाताबाद आकाश किनारे फुटबॉल ग्राउंड के पास 20 फीट जमीन धंसने से 10 घर जमींदोज हो गए, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और 8 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। प्रशासन ने क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, जबकि बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्को ने पीड़ितों को जरेडा योजना के तहत बैरकों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
1: हाँ, लोगों में काफी आक्रोश है कि यह घटनापुर में भी पुनः इस तरह का हो रहा है। हम लोग उस समय एक सर्वे किए थे, जितना पीड़ित थे उतना। अभी इसका एक सर्वे जो है कल डीजीएमएस के सहयोग से, बीसीसीएल के सहयोग से और जेआरडीए की टीम से और हमारे अंचल की टीम से संयुक्त रूप से किया जाएगा और जितने लोग इससे प्रभावित हैं और जितने लोग हो सकते हैं इन दोनों बिंदु पर एक गहन सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा।
0: जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 2 अगस्त को मोहम्मद आफताब आलम हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसआईटी ने मुख्य शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीना ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और अब तक कुल 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
2: बर्मामाइंस क्षेत्र में जो फायरिंग की घटना हुई थी तो उसी में कुछ कार्रवाई पहले भी करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक टू व्हीलर जब्त किया गया था और उसी क्रम में आगे अब कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 फायरर थे, एक शहबाज उर्फ भोलू और दूसरा मोहम्मद रेहान पकड़े गए। इसके अलावा एक और व्यक्ति है शेख रहीम और 2 लोग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है।
0: खूंटी जिले के अड़की प्रखंड अंतर्गत चाराडीह गांव के किसानों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह अलविदा कह दिया है। अब यह गांव आधुनिक और कानूनी खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्थानीय किसानों ने मल्चिंग, ड्रिप और ग्राफ्टिंग तकनीक से हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू की है, जिससे वे एक ही सीजन में 1 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी कमा रहे हैं।
3: पहले हम लोग अफीम खेती करते थे, उसमें अच्छा मुनाफा होता था लेकिन गलत था। उसके बाद हम लोग एक ग्राम सभा बैठक में हम लोग बात किए कि हम लोग ये खेती तो बंद करेंगे लेकिन अभी टमाटर लगाने का टाइम है, इसीलिए एक बार टमाटर लगा के देखते हैं कैसे मुनाफा होता है। उसके बाद हम लोग टमाटर लगाए, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिमखाना क्लब का नए स्वरूप में रामगढ़ जिमखाना क्लब एंड रिजॉर्ट के रूप में भव्य पुनः शुभारंभ किया गया है। यह संस्थान स्वर्गीय आरसी रुंगटा के दूरदर्शी विचारों की देन है। परियोजना के प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट, प्रीमियम बार और कॉरपोरेट सदस्यता शुरू की गई है, जिस पर 31 अगस्त तक अर्ली बर्ड ऑफर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा विवाद पर जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच के साथ सरकार की वार्ता खत्म, सुझावों के लिए सरकार ने जारी की ईमेल आईडी, फिलहाल जारी रहेगा छात्र आंदोलन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना, जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। ग्राहकों के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगा यूपीआई लेन देन, भारतीय भुगतान परिषद ने डिजिटल भुगतान पर शुल्कों की खबरों को किया खारिज। सीआईएसएफ ने रामगढ़ स्थित कुज्जू के टोपा क्षेत्र में अवैध सुरंग का किया भंडाफोड़, 115 टन से अधिक कोयला बरामद। और कतरास में भारी ब्लास्टिंग से 20 फीट जमीन धंसने के कारण 10 घर जमींदोज, प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भागकर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है, अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके

0: पे से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है। रेशमा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने यह गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नज़ारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि

सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे। बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था, फिर लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी। तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था। मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए, लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी। हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है, तो एक और गाना आ रहा है, और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंता की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

0: एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सकें। राष्ट्रगान के पश्चात में वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती हैं कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज गंभीरता और मिठास लिए हुए है और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

0: एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूँ ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

0: Trikamans won the gold with a throw of 80.5 metres. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है।

0: ये डिस्ट्रेक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, लेकिन याद रखिए जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर

0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। एसएच बिहारी के बोल ओपी ने फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज।

मेरे साया फिल्म का यह गीत आपने सुना, अर्शद भोसले की आवाज में था। राजा मेहंदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम कर्केटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने लैब से बाहर निकलकर देश की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने पर जोर दिया।
1: इस टेक डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहाँ लगभग 1600 एमएसएमई सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड में कुछ हो।
0: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर छात्र अपने सुझाव भेज सकते हैं।
2: छात्रों से, विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करना।
0: दूसरी ओर छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख दी हैं, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कल रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मास्टर क्लास में विशेषज्ञ विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। जामताड़ा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची में दावा आपत्ति और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जामताड़ा महाविद्यालय मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर पार्थ कुमार मंडल ने बताया कि छूटे योग्य आवेदकों से फॉर्म 6 और मतदाता सूची में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरवा कर जमा लिया जा रहा है।
3: कैसा यार 2026 के

0: 5 अगस्त को जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ उसके लिए आज विशेष, आज और कल यानी 8 और 9 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित की गई है। इसमें अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उनके लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है, किन्हीं को सुधार करना है तो उनके लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है।
1: सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शनिवार को एसडीओ अभिनव प्रकाश ने जांच की। इस दौरान विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच में कुछ स्टॉक रजिस्टरों के सही तरीके से संधारण नहीं होने की बात सामने आई। संबंधित कर्मियों को सुधार के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। सोमवार को दोबारा जांच होगी। शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर जांच में बुलाया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए नागरिकों से खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मन चाहे गीत,
3: आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
4: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
5: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां 1 महीने में 1 बार ही शामिल की जाएंगी।
4: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
5: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
6: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील, ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
4: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया मुन्ना भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा

जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना।

खत मिले हैं अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहिब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, माशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव, ओह फो, केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, ओह तीसरी घंटी हो गई, ओह केशव से कहोगे अनाउंस करे? हाँ है ये लेकर कि तुम, केशव ठाकर, प्लीज,
2: अभी आया पाटिल जी, जी,
1: जी, जी, ओके, ओ अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ जहाँ, जहाँ,
1: केशव, कहाँ जा रहे हो? हाँ, माइक्रोफोन तो ये रहा,
2: सारी, सारी माइक गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जन। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद, जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सकें ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: आओ, सब आ जाओ, आज मेरी अर्थी उठ रही है।

0: बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन
1: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है, हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
3: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
0: अरे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
3: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
3: मुझसे सुनो मेरी घोषणा, मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा, अलविदा।
4: मुझे विश्वास हो गया है कि
3: कैसा विश्वास?
4: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
3: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर
4: नहीं, प्रमोद रुक जाओ, इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
3: कांता ये पिस्तौल मुझे दो,
5: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
4: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
5: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
4: सर तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
3: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
0: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
3: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
0: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
0: है?
3: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
3: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है, और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
5: प्रमोद तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
3: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता।
4: नहीं, तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
0: कांता अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
3: जे मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा, तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो वो क्या?
6: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
2: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो?
0: हाँ हाँ।
2: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये हैं मिस्टर देश पांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
5: आखिर बात क्या है नंदलाल?
2: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे, और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है,

0: इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
1: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
0: अरे जोसना, ये क्या कर रही हो?
1: भाभी,
0: ये पिस्तौल असल है,
1: मेरे पास रहने दो। भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
2: क्या कर रही हो तुम?
1: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
3: जो कर रही थी
4: सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
5: आपका नाम? उम्र? काम?
4: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
5: सरकारी वकील अब दवा से जिरह कर सकते हैं।
6: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
4: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
6: कुछ और?
4: मतलब?
6: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
4: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
6: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
4: जी जी हाँ।
6: 15 को ही क्यों?
4: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
6: ये नाटक कब हुआ?
4: पिछले महीने की 1 तारीख को।
6: नाटक का नाम क्या था?
4: किसी एक फूल का नाम लो।
6: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
4: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
7: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
8: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
4: हाँ, छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
8: केशव ठाकर? वो लेखक।
4: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ,
8: सुंदर से पूछ ले।
4: आता ही होगा सुंदर भी।
9: जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना। मुलजिमा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
6: आप दोनों साथ रहते हैं?
9: जी हाँ, मैं, कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।

0: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
1: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
0: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
1: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
0: जगन्नाथ पाठक और कामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
1: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामिनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
2: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामिनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
1: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
3: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
1: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामिनी?
1: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
0: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
5: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
3: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
0: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
5: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
1: अजी स्वाति जरूर आई ही ना।
0: सुंदर,
1: अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
0: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई से।
1: अरे यार मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
6: जी मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी कामिनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामिनी पाठक के प्यार में।
0: आपने ये कैसे मान लिया?
6: कामिनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
0: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
6: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि।
0: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
6: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामिनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
0: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और?
6: जी
7: मैं स्वाति सोनी हूँ। पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामिनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
8: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
7: जी हाँ।
0: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
7: जी हाँ।
0: हाँ
7: जी,
0: या ना?
7: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
0: क्या मतलब?
7: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
0: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
7: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
0: याद रखिए आपने हल्फ उठाया है।
7: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
0: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
7: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
0: आप कुछ छुपा रहे हैं।
7: आप क्या कहना ना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
9: कामिनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
10: सुंदर तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा ही कौन मिलता है।
2: तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?

0: प्रीतम बहुत सीधा है। उसने उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन लेकिन कोई और जानता है।
1: कोई और जानता है? कौन?
0: केशव ठाकर।
1: केशव ठाकर, वो बुद्धू लेखक?
0: हाँ, वो बुद्धू लेखक। वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
2: जी, मेरा नाम केशव ठाकर नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
3: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
2: जी हाँ जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
3: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
2: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
3: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
2: जी हाँ, मैंने लिखा था।
3: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
2: जी हाँ।
3: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
2: वकील साहब, अजी आ सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
3: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
2: जी,
3: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
2: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
1: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक की रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल लिया और मुंह चला लिया।
2: कुछ नहीं।
4: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह दिख रहे?
2: कुछ नहीं, वो जरा
5: आंशस हो गया।
3: अच्छा, ठीक है,
6: ये पाठक भी आज कुछ
3: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो? उससे
7: कह रही हूँ, आप पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो? रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं?
3: कांता, मान लो
7: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी?
3: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
2: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यानी केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
3: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
2: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
3: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
2: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
3: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
2: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
3: सवाल ये है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
2: आज देखिए ना वकील साहब, इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
3: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
2: किस बात का जवाब?
3: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
2: अजी, इंसान को देखिए ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई, हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी, मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
3: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी, और झूठा जवाब दिया तो जेल।
2: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी, क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी, इतना विद्वान तो मैं नहीं।
3: आप शेखर खोसला को जानते थे? हाँ या ना?
2: जी जी कुछ नहीं याद नहीं।
5: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
2: अजी क्या बात करते हैं वकील साहब जी, बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
5: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ, उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
2: जी नहीं।
5: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
2: कुछ नहीं।
5: ठीक से याद कीजिए।
2: जी वो जी मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
5: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
1: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
8: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
7: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ औरम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
8: सच बताओ कामनी।
7: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
8: नहीं, लेकिन लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
7: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
8: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
7: धमकी देते हो?
8: सफाई चाहता हूँ।
7: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फूंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
8: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
7: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
8: इस चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
5: मिस्टर केशव ठाकर
2: जी,
5: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
2: जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
9: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
2: जी,
9: शेखर खोसला कौन था?
2: जी जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
9: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
7: जी जी, कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
9: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
10: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
9: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
10: जी वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
9: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
8: मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
11: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना।

0: गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल। नमस्कार।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से ये प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। IIT ISM धनबाद में आज नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर ध्यान देने का आह्वान किया। JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jsse.feedback@gmail.com ईमेल जारी किया है, जिस पर छात्र अपने सुझाव भेज सकते हैं। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कल रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शनिवार को SDO अभिनव प्रकाश ने जांच की। इस दौरान विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच में कुछ स्टॉक रजिस्टरों के सही तरीके से संधारण नहीं होने की बात सामने आई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
2: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
3: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी। तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है, है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती अकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती थी।
2: जी जी बिल्कुल।
3: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
2: क्या उम्र होगी वो? लगभग
3: 7th स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे। अच्छा, कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। अच्छा। तो जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है। छोटे भाई बहन हैं, हम पांच भाई बहन हैं, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए, ट्यूशन दे

0: करती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा तो मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया।
0: हाँ एक हाथ मिल गया, और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी,
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि
1: हाँ
0: उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें, अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है, तो
1: अच्छा
0: मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम,
1: सिखा
0: अपने
1: लो
0: साथ रख के
1: जी।
0: आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे, और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी,
0: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है,
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बहा रही है बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी, बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी।
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे, तो गणेश हेगड़े जी
1: जी,
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर हैं।
0: उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी,
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा, तो अम्मी
1: हाँ,
0: मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट ये
1: कीजिए।
0: था हाँ कि एक इतना अमाउंट आएगा, तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति मैम
1: कैलकुलेशंस
0: ने,
1: चालू हो
0: हाँ
1: गया।
0: मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है।
1: हाँ
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है।
1: ठीक,
0: उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है,
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है,
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ,
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है
0: से,
1: जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे वाह
0: अम्मी
1: जी,
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त पर।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजन, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी,
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात है,
0: मिला। फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम बहुत बड़ी
1: है।
0: फैन, मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है
0: सब है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक, उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया।
1: गीत।

0: पे मार
1: जी
0: दूं।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो जो
1: करने के गाने
0: अल्फाज,
1: चाहिए।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त के लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तोहे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो।
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले के
1: अच्छा
0: फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर हम
0: बहुत
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तोहे प्यार दूं, गाइड
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तू।
1: तो शबीना जी आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
2: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
0: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
1: जी जी।
0: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
0: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
1: जी,
0: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
1: शुरू हो जाती है,
0: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
1: वेरी गुड डांसर,
0: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है जो कमल मास्टर जी थे
1: जी,
0: और कमल मास्टर जी बहुत कमाल, उन्होंने एक ट्रेंड जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था
1: जी,
0: भोली सूरत दिल के जो वो हाथ का स्टेप
1: वो सब
0: था,
1: कमल जी का दिया,
0: वो कमल जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: बड़ी तो, अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
0: बिल्कुल। वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी

0: करते थे गणेश मास्टर जी, वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग है
0: हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
1: जी
0: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
1: जी
0: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
1: बिल्कुल
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
1: आगे के
0: इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: फीमेल
0: अदायगी
1: एक्सप्रेशंस
0: मुझसे
1: आप ही
0: मिलेगी।
1: दोगी।
0: डुएट सॉन्ग
1: बिल्कुल
0: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
1: हाँ
0: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
1: हाँ
0: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
1: जी
0: और करके दिखाना।
1: जी
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
1: जी
0: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और गणेश
0: और उन
1: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान
0: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
1: मैं ही
0: जो
1: सिखा रही थी
0: मैं
1: उस
0: ही,
1: समय
0: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
1: तो
0: यू नो।
1: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
0: मैं
1: मैंने
0: मजेदार
1: असिस्टेंट
0: बताऊं थोड़े
1: कोरियोग्राफर।
0: से, लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी तेरे
1: है,
0: पीछे
1: क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे।
1: है
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी।
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
0: उस वक्त
1: तो
0: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी। वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी
0: ऐसा
1: वहां पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है।
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट
0: जी जी
1: पर्सनालिटी
0: जी
1: बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फें
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोल,
0: फोड़ने वाला गाना।
1: मटकी फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहां पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई भी।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे थे।
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि कोई
0: अच्छा
1: बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीज़ें
1: कुछ,
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: हार्ड
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: मुझे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही मैं
0: सकते।
1: चाहती थी कि आपके
0: जी,
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
1: बिल्कुल
0: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना, फिजिक्स
1: बिल्कुल
0: की मैथ्स भी होती है
1: बिल्कुल,
0: और
1: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर

0: होंगी।
1: बट कॉमर्स भी इजी नहीं है।
0: हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: ये
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद,
1: बात है, बुक
0: हाँ
1: कीपिंग
0: पढ़ाई में
1: की।
0: अच्छी। हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
1: जी
0: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है।
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को, 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें अच्छे
1: जी
0: दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
1: हाँ,
0: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है।
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी।
0: बिल्कुल मैं अपने आप
1: इसके
0: को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है,
0: नहीं
1: काम
0: जा।
1: करने के लिए लग
0: चार
1: जाना है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है।
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि
1: जी
0: ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्या
0: जी,
1: बात है।
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी,
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था, शबीना आएगी ना
0: शबीना है
1: सिखाने
0: ना,
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल
0: हाँ
1: कपूर जाके वीजा लगवा रहे।
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता,
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ,
0: कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी।
1: गाना
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं
1: है।
0: पढ़ ही
1: जी
0: रही
1: जी
0: थी,
1: जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म। अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, तो
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो
0: ये
1: भी बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा
0: आहा
1: वाली
0: हा
1: जी
0: हा
1: ने,
0: हा आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित का।
1: अभी अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ ग्रेसफुल
1: जी
0: डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है।
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं, एडिटिंग तक, पहला प्रोसेस होता है गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं,
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं,
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे, फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।

0: गाना है जलते दिए,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे
1: जी
0: तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और
0: जी
1: वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे
0: बिल्कुल।
1: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी।
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनको
1: जी
0: तो सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो,
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है।
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो।
1: एलईडी वाले।
0: ही
1: जी
0: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस गाने
1: बड़जात्या
0: की।
1: का ये काम ऐसा
0: हाँ, तो
1: होता
0: उसमें
1: है,
0: दिए
1: ये
0: जलाने में मैं
1: ऑथेंटिसिटी
0: भी होती
1: होती
0: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
1: जी,
0: आपने जो
1: उसके
0: सवाल
1: साइड पे
0: किया,
1: भी, पटरी
0: साइड
1: पे भी
0: में
1: जल रहे हैं। जी
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं,
1: जी
0: और उन दियों को हम जलाते थे, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
1: हाँ, और वो
0: तो वो
1: बहुत लाइट
0: चलकर,
1: नेट की
0: हाँ,
1: साड़ी है वो।
0: तो
1: जी
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
0: नहीं,
1: रही है और
0: वो
1: वो।
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
1: जी
0: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले वो हमारे सेट पे होते हैं,
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट्स,
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है।
0: हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
1: जी
0: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: जरूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: जरूरी।
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
1: बहुत
0: कोमलता
1: रिच
0: से
1: सॉन्ग है,
0: दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: बहुत
1: सॉफ्ट,
0: प्यार,
1: बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल।
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया,
1: जी
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं. जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं. तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है. तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी
1: रेखा
0: आपने
1: जी को
0: सिखाया है. तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से
1: मैं
0: बता सकती हैं.
1: हर
0: जी
1: एक के बारे में बताती
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी
1: रेखा जी
0: आए
1: हमारी उड़ाओ जान,
0: जी
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की,
0: जी
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी,
0: जी
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही
1: आज
0: खूबसूरत
1: भी
0: है,
1: उतनी
0: पचहत्तर तेहत्तर
1: ग्रेसफुल,
0: 74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी
1: आज
0: है.
1: भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो
0: हाँ
1: दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी
0: हाँ
1: है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, और उनके साथ मैंने वो फिल्म की,
0: जी
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
0: जी
1: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
0: आह, क्या बात है.
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है,
0: अच्छा
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है
0: अच्छा
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नज़ाकत,
0: हाँ
1: यू नो वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल,
0: यस
1: ग्रेसफुल। मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
1: बिल्कुल
0: निकल जाना.
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आपको ज्यादा शोर शराबा जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी,
0: हाँ
1: जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर।
0: सोनम
1: शी वर्क
0: कपूर.
1: रियली हार्ड, रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरे के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरे पे दिखा सकती हूँ। जो जलते
0: बहुत
1: दिए में आप देखिए,
0: सॉफ्टनेस के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल
0: डांस किया जी.
1: शकुंतला बन गई थी वो,
0: हाँ
1: बिल्कुल उस
0: हाँ
1: गाने
0: ऐसा
1: में,
0: ही,
1: यही था।
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था. शी वॉज
1: शी
0: वेरी
1: इज
0: गुड,
1: वेरी ग्रेसफुल।
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार उन्होंने.
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है,
1: यू नो,
0: कहेंगे लोग.
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनके कोई
1: तो
0: नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी? जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए. ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में. तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
0: जी
1: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ।
0: जी
1: उनके साथ अब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
0: जी
1: थे।
0: जी
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो
0: जी
1: मैं रो पड़ी। शी
0: हाँ
1: केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखाइए गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: आ क्या बात है
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
0: जी.
1: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
0: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को उन्होंने अगर मान के उसके जैसा,
1: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
0: जी।
1: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजाजिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
0: जी। बहुत
1: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है
0: जी।
1: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया
0: जी,
1: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड के मुझे चेंज करना है, शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है
0: जी।
1: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बजातिया जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है, सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए, तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
0: जी
1: तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
0: हाँ।
1: और सलमान खान,
0: हाँ।
1: उन्होंने जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है वो, सगा भाई है
0: जी।
1: वो, भी मेरे साथ रह रहे के वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है,
0: अरे वाह।
1: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। तो सूरज जी ने बोला कि शबीना।
0: जी
1: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
0: हाँ।
1: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
0: और उनको वहां तक लाना पड़ता
1: लाना
0: है,
1: पड़ेगा
0: मेहनत
1: आपको
0: करनी पड़ती है।
1: उनके कैरेक्टर को, मैं करके दिखाती हूँ इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि
0: हाँ।
1: उस कैरेक्टर को जी पाऊं, उसकी तरह बन पाऊं, उसके जैसे लचक लाऊं, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
0: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक

0: राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
1: सारे
0: इनके
1: एचओडीज
0: असिस्टेंट, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं.
1: बिल्कुल।
0: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
1: तभी
0: किरदार को
1: प्रेम
0: जी रहे
1: रतन
0: होते
1: धन
0: हैं.
1: पायो बनी है, मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल, और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
0: जी
1: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
0: जी
1: इसका कोई भी कोना, कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी,
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल
1: सोनम का कैरेक्टर
0: जी
1: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
0: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
1: उनको भी
0: बीच में.
1: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
0: जी
1: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
0: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे. वहां तक
1: बिल्कुल
0: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे
1: बिल्कुल
0: श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे. थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है.
1: उफ प्लीज।
0: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
1: बिल्कुल,
0: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है.
1: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
0: हाँ
1: पर,
0: बिल्कुल
1: अगर
0: जी,
1: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
0: आपके
1: इंटरव्यू
0: नजरिए
1: के
0: से.
1: बाद, अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें, तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ, कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
0: हाँ
1: जंगल में वो गाना शूट हो रहा
0: हाँ
1: है और दो लोग
0: लाइट
1: हैं,
0: इफेक्ट इतना खूबसूरत आ रहा
1: बिल्कुल
0: है जी,
1: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है
1: और दोनों हर फ्रेम में है,
0: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
1: लाइट्स
0: गई
1: भी
0: हैं
1: नहीं है,
0: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
1: तो
0: जंगल का है.
1: उसको वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
0: जी
1: किया है।
0: बिल्कुल.
1: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
0: तो ऐसे
1: कोरियोग्राफर एक
0: गानों में भी
1: म्यूज,
0: कोरियोग्राफर का काम
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: सिर्फ
1: होता है,
0: नाचने के लिए नहीं, बाकी.
1: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
0: जी
1: और आपके ये गाना देखिए, आई
0: जी
1: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
0: जी
1: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
0: जी
1: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
0: जी
1: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
0: की मोमेंट हो.
1: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे, जो लग जा गले में हुआ है,
0: जी
1: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
0: अरे
1: मनोज कुमार जी,
0: बहुत खूबसूरत गीत है.
1: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में, इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
0: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले.

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर

श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी खबरों के प्रकाशन से पहले तथ्यों और जमीनी स्थिति का सत्यापन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान संख्या को पहले से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जहां मकान संख्या नहीं है वहां दावा आपत्ति अवधि में बीएलओ द्वारा नोशनल नंबर दिए जाएंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव के मद्देनजर रांची में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जतरा कार्यक्रम के दौरान जेल चौक से करमटोली चौक, एसएसपी आवास मोड़ और मोराबादी के बापू वाटिका तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोहरदगा के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया परिसर में आज पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि इन अपराधियों से पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास एनटीपीसी की कोयला उत्खनन गाड़ी पर फायरिंग की घटना में संलिप्तता सामने आई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जी हाँ, श्रोताओं शाम 7:45 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत, और आज का शीर्षक है भारत का अंतरिक्ष और उसका अवलोकन। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण के हैं, और रात 8:45 पर हम प्रसारित करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से ही इस सप्ताह संसद के। रात 8:15 पर का प्रसारण समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट से, जिसे आप सुन सकेंगे अपने डाल्टनगंज केंद्र से ही। रात 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 9 बजे का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। इसका प्रसारण हम करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से ही, और रात 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। यहाँ श्रोताओं, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे अपने विविध भारती के तहत मुंबई केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और रात 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हम करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से, और रात 11:10 पर आज के सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे अभी से लेकर रात 11:10 तक

0: और अब आइए सुनते हैं वार्ता। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, वार्ताकार हैं अदिति त्रिवेदी।
1: आज हम स्थानीय पर्यटन के बारे में बात करेंगे। पर्यटन किसी भी जगह की चार दीवारी का मोहताज नहीं होता है। जैसे कि आप समझें, हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अगर बेतला है तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर लोध फॉल लातेहार जिले में है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यटन किसी भी सीमा से ऊपर की चीज है। इसलिए पलामू की जब भी हम बात करें तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो स्थल पलामू में ही हो। वो स्थल पलामू के बाहर या पलामू के निकट भी हो सकता है। अब हम यहाँ से कुछ पर्यटन स्थलों की जानकारी ले लें। हम पलामू में हैं और स्थानीय पर्यटन की बात करें तो बेतला टाइगर रिजर्व, लोध फॉल और नेतरहाट, ये तीन पर्यटन स्थलों का नाम प्रमुखता से आता है। बेतला नेशनल फॉरेस्ट पलामू कमिश्नरी के हेडक्वार्टर डाल्टनगंज से बाईपास रोड से मात्र 24 किलोमीटर पर है, जबकि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन बरवाडी और डाल्टनगंज दोनों हैं, और दोनों ही स्थान बंगाल की राजधानी कैलकटा एवं हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। पर्यटकों को बेतला पहुंचना भी बहुत आसान, सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जहां रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल भी खुल गए हैं। टूरिस्ट वाहनों का सीधा सेवाएं तो कम है, लेकिन आप बस, ऑटो या कार बुक कर वहां पहुंच सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क 2600 स्क्वायर किलोमीटर का कोर फॉरेस्ट है। बेतला नेशनल फॉरेस्ट की सीमा एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के सतपुरा जंगल से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में हजारीबाग नेशनल फॉरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें समय समय पर बाघों के दर्शन भी हो जाया करते हैं। बरसात के दिनों में हाथियों के झुंड को भी आप अवश्य ही देख पाएंगे। जंगली भैंसा, हिरन और बंदरों को देखना तो आम बात है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पर्यटन लोध फॉल की ओर। लोध फॉल पलामू ही नहीं, झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है, जहां 110 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है, जिसकी आवाज 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ ठहरने के लिए होटल नहीं है। लोध फॉल से आगे बढ़ते हैं और नेतरहाट की वादियों में अब हम आप लोगों को ले चलते हैं। नेतरहाट के बारे में मैं बता दूं कि नेतरहाट में देखने लायक कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको भारत में कहीं नहीं दिख सकती हैं, जिसमें भारत का गौरव कहलाने वाला नेतरहाट पब्लिक स्कूल शामिल है। यहाँ का यादगार स्थल मैग्नोलिया पॉइंट भी है, जहाँ से हम सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। नेतरहाट वस्तुतः नेचर प्लस हार्ट का अपभ्रंश है, अतः नेतरहाट को हम प्रकृति का हृदय भी बोल सकते हैं। सरकारी सुविधाओं में ठहरने के लिए मुख्यतः पलामू बंगला और रेवेन्यू

0: कुछ निजी होटल भी हो गए हैं, लेकिन सरकार को इस स्थल के विकास के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय रोजगार भी बढ़े। पर्यटन में रोजगार की बात अगर करें तो पर्यटन और रोजगार में अन्योन्याश्रय संबंध है। किसी भी स्थल का पर्यटन बढ़ता है तो सिर्फ पर्यटन ही नहीं बढ़ता बल्कि स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है। रोजगार के नए नए अवसर भी बढ़ते हैं। जैसे पर्यटक बढ़ेंगे तो उनके लिए टिकटें भी बुक होंगी, स्थानीय वाहनों की भी जरूरत होगी। जाहिर सी बात, निजी पर्यटक कार्यालय भी खुलेंगे जिसमें स्टाफ की नियुक्ति होगी, वाहनों के लिए ड्राइवर की व्यवस्था होगी, स्थानीय चालकों को रोजगार मिलेगा। अब जो पर्यटक स्थल पहुंच जाएंगे उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए होटलों की व्यवस्था होगी। तय बात है कि स्थानीय लोगों की नियुक्तियां होंगी और रोजगार बढ़ेंगे। भारत के कोने कोने से, जहां तक कि विदेशों से भी पर्यटक जब आएंगे तो यहां की खूबसूरती को देखने के साथ ही साथ यहां की संस्कृति को भी देखेंगे और यहां के खान पान का भी मजा लेंगे। खासकर ऐसा देखा गया है कि स्थानीय पर्यटक यहाँ विदेशी व्यंजन एवं कॉन्टिनेंटल डिशेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं विदेशी या मेट्रोपॉलिटन से आए हुए पर्यटक देशी या स्थानीय खान पान का मजा लेना चाहते हैं। अतः हमारे यहाँ के देसी व्यंजनों के लिए भी एक बेहतर अवसर होगा। आप सभी स्थानीय हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय व्यंजन तो बड़े ही लाजवाब हैं, जैसे करील और करील का अचार, ओल की चटनी, धुसका, दुधौरी, अरसा और भी न जाने कितने ही व्यंजन झारखंड और पलामू की रसोइयों में भरे पड़े हैं। पर्यटक आएंगे तो मार्केटिंग राष्ट्रव्यापी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ का धुसका, यहाँ के लकठो और यहाँ का दुधौरी अपने आप में असीम रोजगार की संभावनाओं को समेटे हुए हैं। जरूरत है हमें और सरकार दोनों को इसके लिए रास्ता बनाने की। हम देखते हैं कि पलामू में पर्यटन भी है, पर्यटन की असीम संभावनाएं भी हैं, लेकिन समस्त भारत के पर्यटक पलामू के पर्यटन स्थल को देखना चाहते भी हैं। अतः झारखंड सरकार से पहली प्राथमिकता में झारखंड और खासकर पलामू पर्यटन को विकसित करने की अपील करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़े और राज्य की भी अतिरिक्त आय बढ़े। नमस्ते।
1: युवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का स्वागत है। भी आपने सुना वार्ता, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। वार्ताकार थी अदिति द्विवेदी। चर्चा आज हम ये कर रहे हैं कि आवश्यकता के अनुसार मोबाइल का प्रयोग करें। तो युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही हमें मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, पर ये हो नहीं पाता है। हम अनावश्यक भी बहुत देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये मोबाइल हमारे साथ में, जैसे हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत कुछ हमारे काम हल भी होते हैं तो बहुत नुकसान भी होते हैं, और ये हमारी आदत हम तक रहती है और धीरे धीरे हमारे बच्चों तक भी चली जाती है। क्योंकि जैसा हम माहौल पैदा करते हैं घर का, यही माहौल उन तक पहुँचता है। मोबाइल सुबह से लेकर जैसे आँख खुले हाथों में मोबाइल, और रात तक का सफ़र होता है मोबाइल के साथ। लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल, जब ज़रूरत नहीं होती है तब भी हम मोबाइल के साथ ही रहते हैं। ऐसे में कई रिश्ते हमसे टूटते चले जाते हैं। एक ही घर में चार लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल का साथ लेते हैं। अगर बात भी होती है तो बस हूँ हाँ में करके बात निकल जाते हैं। कुछ भी करना है मोबाइल के साथ, लिखने का, पढ़ने का, हर चीज़ का तरीका हमारा बदल गया है। यहाँ तक कि हम अगर बाज़ार का लिस्ट भी बना रहे हैं तो कौन जाए पेन और ये कागज़ लेने, चलो मोबाइल पे। ऐसे क्या है, मोबाइल के साथ साथ कभी कभी हमारे साथ ये भी हादसा होता है कि हम भीड़ भाड़ जगह में जाते हैं बाज़ार में जैसे सामान लेने के लिए, और मोबाइल से ही हम सारे सामान लिखवाना शुरू कर देते हैं। कईयों के साथ ऐसा होता है कि वहाँ से मोबाइल बिल्कुल चोरी हो जाती है, मोबाइल गायब हो जाता है। तो ऐसे में हो भी क्यों ना, क्योंकि हमेशा मोबाइल का जहाँ इस्तेमाल है हमें वहीं करना चाहिए। लेकिन हम 24 घंटे मोबाइल के साथ हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मोबाइल हमको घेरे हुए हैं। मानसिकता की बात करें तो 24 घंटे मोबाइल पर रहने के साथ

एक तो ऐसे ही हमारा काम बिना मोबाइल का होता नहीं, लेकिन पर जब काम भी नहीं रहता तो हमारा ऐसा होता है कि चलो अब तो काम कर लिए, अब थोड़ा मोबाइल पे देख लेते हैं, दिन दुनिया की खबर लेते हैं। तो क्या पहले लोगों को दिन दुनिया की खबर नहीं मिलती थी? मिलती थी, पर हमारी आदत इतनी अब गलत हो गई है कि मोबाइल के बगैर एक मिनट भी रहना हमारा मुश्किल हो गया। ये हम सब की आदत बनती जा रही है और इससे अगर छुटकारा हमें पाना है, जैसा देखिए कि अगर एक दिन में एक घंटे के लिए आप मोबाइल से दूर रहते हैं, काम है तो कीजिए, वो एक घंटे में आप अपने आप को कितना पहचानते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, आपके कितने ऐसे घरेलू काम निकल जाते हैं। लेकिन मोबाइल की ललक ऐसी है कि अगर आप 5 मिनट के लिए लेके बैठते हैं तो आपको घंटों अपने गिरफ्त में कर लेती है। तो मोबाइल का उपयोग सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो हम मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो समय, रिश्ते, हर चीज़ का ख्याल हम रखेंगे, पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मोबाइल तो हमारे साथ है, हमेशा है, और ये मोबाइल की आदत जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, कई बीमारियां हमारे साथ लेकर आती है। बच्चों को भी देखे तो मोबाइल 24 घंटे मोबाइल के साथ रहना है आजकल। आज देखिए, आज के समय में बच्चे ना खेल पाते हैं ना बाहर जा पाते हैं, उन्हें ज़रा भी वक्त मिलता है तो सोचते हैं मोबाइल के साथ रहें। और अगर अभिभावक भी हैं तो यही चाहते हैं, चलो मोबाइल देके थोड़ी देर के लिए बच्चे से छुटकारा लिया, अपना काम कर रहे हैं। तो कई बातें हमारे साथ है दोस्तों, तो मोबाइल का सदुपयोग हमें करना है, हमें मोबाइल से दूर रहना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, आइए सुनते हैं अब एक खूबसूरत गीत।

0: चर्चा था भारत छोड़ो आंदोलन। सूत्रधार थे प्रीति कुमारी और प्रस्तुति थी प्रभु सरन की। आइए सुनते हैं प्रादेशिक।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री

0: हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। साहिबगंज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल यानी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी विजय कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने त्वरित न्याय और जरूरतमंदों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। अप्रैल से जून 2026 के बीच न्यायालय में दर्ज 1410 नए मामलों में से 832 मामलों का निष्पादन किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। ये सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: जतई गोबर ततई धान।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनोया सब भाई बहन मन के मनीष भाई कर जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
0: आओ आओ मनीष भाई जोहार जोहार और मोर बट से हूँ सब सुनवाइया मन के जोहार। बताई देवे खोजिला ई कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: और बताओ करण भाई, का हाल समाचार है?
0: अरे देखो, बरसात कर दिन है, बरसात कर दिन में तो सोबट हरियरी हरियर दिसेला है नी, और सावन कर महीना हूँ है और खेत मन हूँ लहलहाते, रोफा डोभा कर काम हूँ चलत है, तो जीव जहान तो बढ़िया है और बढ़िया रखे चाहिए, कैसा नहीं रहो रे?
1: मैं हूँ बढ़िया हूँ, लेकिन देखो नी अखन पानी बरसा का मौसम है और ये मौसम में मुरुक आदमी मन कर तबियत हूँ खराब होते, आदमी मन के अपन जीव जहान कर ध्यान हूँ रखे के।
0: एकदम सही कहती।

0: सर्दी खोखी मन हो जाएला और मौसम बदलेला तो तबियत मन हो गड़बड़ाबे करेला। और स्वस्थ मस्त रह के लिए मनीष भाई देखू पैसा कौड़ी कर बहुत दरकार पड़ेला है नी
1: एकदम।
0: आ देखू नी एखन तो समय बदलत है जमाना बदलत है और पैसा रही तो देखू जीव जहान हूँ देखू खुशहाल रहेला। और एखन तो हमरे मन सूचना कर युग में जियत है सब बड़ सूचना और सूचना भरल है। हमरे मन अपन खेती बाड़ी कर जो तौर तरीका है वो केहू हमरे मन इस सूचना कर युग में बदल के बढ़िया कचिया कमाई सकेला। संगे संग देखू नी आ तो वैज्ञानिक जमाना हूँ है नी तो ये वैज्ञानिक जमाना में बहुत एकन जे खेती बाड़ी करे कर तरीका है सेहू बदल जाये। आधुनिक विधि कहली खेती बाड़ी करे कर तरीका तो देखो इकर में हमरे मन आज कल जे देखत ही ड्रोन मन कर प्रयोग होवत है नी।
1: हाँ हाँ
0: और इकर में आज कल देखेला बहुत एकन किसान मन इकर उपयोग करत है तकनीक से खेती करत है। बूंद बूंद जे टपक सिंचाई विधि आहे
1: हाँ
0: इ केहू अपनाई है इकर से का हुआ थे नी कि पानी बहुत एकन बाचेला। और पोली हाउस चाहे ग्रीन हाउस केहू हमरे मन अपनाई के नी जे बेमौसम है उकर में खेती कर सकेला बढ़िया एकन। तो आशा करेला कि भाई बहन मन जे आधुनिक कृषि तकनीक आहे विधि आहे से के अपनाबे और पुरना वाला जे है बेस आहे के तो लेके चले के चाहिए लेकिन जेकर से हमरे के बहुत फायदा नहीं होवेला तो उके छोड़ के आगे जाए के चाहिए। और एखन नवा नवा कृषि यंत्र मन हूँ आवत है तो उकर हूँ उपयोग करके हमरे मन के अपन उपज के बढ़ाए के आहे का कहला
1: एकदम। और हमरे घर जे सरकार है भारत सरकार ओहो ई विधि के आधुनिक कृषि तकनीक के बढ़ावे ले बहुत प्रयासरत है और कई गो ऐसा योजना चलाई के हमरे मन के मदद पहुंचाते है जेकर से आधुनिक कृषि तकनीक के बढ़ावा भेटाते है।
0: जैसे
1: भारत
0: का
1: सर
0: योजना है
1: देखो इसने योजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ड्रोन सब्सिडी योजना और कृषि संरचना कोष, यह तरीकर योजना है जेके भारत सरकार चलाते है।
0: एकदम सही कहते हैं। और एखन तो देखू मनीष भाई सब किसान मन कर हाथ में स्मार्टफोन है और एआई कर जमाना है तो एआई कर प्रयोग करके मौसम कर हाल के जान सके ना चाहे अपन खेती में का बीमारी होवत थे उ केहूँ जान सके ना और का दवाई देवे का है कौन बड़ा खेती करे का है कैसन करे का है कम पानी आवत है तो कम लागत कर कौन कौन बिहन मना है किसी मना है उके लगाएक है तो इकर जानकारी हूँ एआई कर माध्यम से भेटा थे तो हमरे मन की एआई कर हूँ प्रयोग करे के चाहिए।
1: करेक्ट चाहिए
0: एखन तो खरीफ है कर समय है और ई मौसम में हूँ सब्जी फसल मन कर बहुत खेती करल जाएला है ने हमरे कर राज्य में हूँ सब्जी कर खेती तो अब बहुते करल जाएला है ने।
1: हाँ हाँ
0: और बाहरे मन हो जाएला सब्जी झारखंड राज्य से बाहरे तो किसान मन बहुत आगे बढ़त है तो मैं देखू अगर उमन और उन्नत किस्म मन के लगाबो है होलुकर से उमन के फायदा होवे है नी
1: एकदम। तो हमरे मन कर उन्नत किस्म कर लगाए कर बारे में जाने के चाहिए, कखन के लगाए के का तरी के पोषक तत्व मन देवे के उकर बारे में जाने के चाहिए।
0: एकदम सही कहली। तो आज हमरे मन चलू आज की बात में खरीफ सब्जी फसल कर उन्नत किस्म का आहे और इके कैसे लगाल जाएला देखभाल कैसे करल जाएला इकर बारे में हमरे मन जानेला बताते हैं डॉक्टर बीके झा और इनकर से गोठियाई हैं प्रभु शरण।
1: चलू तब सुनीला।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे खरीफ सब्जी फसलों के बारे में और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज जो हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं वो हैं डॉक्टर बाल कृष्ण झा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था रांची केंद्र में ये कार्यरत है। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: किसान भाइयों जोहार।
2: सबसे पहले तो ये बताएं कि खरीफ में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां जो झारखंड में उगाई जा सकती हैं?
3: किसान भाइयों झारखंड के प्रदेश में अगर आप खरीफ के मौसम में कर रहे हैं तो जैसे प्रमुख सब्जियां हैं बैगन, टमाटर, फूलगोभी, लोबिया, भिंडी, फ्रेंच बीन, मिर्च, शिमला मिर्च, सोयाबीन या इसके साथ साथ आप लतेदार सब्जियां जैसे कि कद्दू, करेला, नेनुआ, खीरा तो इनकी भी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं खरीफ के मौसम में।
2: तो इसके जब उन्नत प्रभेद अगर लगाए जाएंगे तो बेहतर उत्पादन हो सकता है, तो इन सब्जियों की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं?
3: किसान भाइयों खास करके जब आप सब्जियों की खेती करते हैं तो उसके उन्नत या संस्कृति किस्म पे आप जरूर ख्याल रखें। इसमें जैसे अगर आप टमाटर करना चाहते हैं टमाटर की खेती तो इसमें हमारे केंद्र से जो विकसित संकर किस्में हैं जैसे स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण विजय है, स्वर्ण समृद्धि है या स्वर्ण वैभव है तो यह पूषा हाइब्रिड वन है तो यह सब की उपज काफी ज्यादा होती है, करीब 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी उपज होती है जो हमारी शंकर किस्में होती हैं। जो हमारी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज डेवलप हैं जैसे कि स्वर्ण विजया, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण नवीन, पूषा शीतल तो इनकी क्या है कि उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है तो ये आप हमारे यहाँ से ले भी सकते हैं। और साथ में जैसे आप बैगन की खेती करना चाहें तो बैगन में स्वर्ण अजय, स्वर्ण शक्ति जिसकी उपज लगभग 650 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, इसमें भी जैसे आपके पास चॉइस होती है कि आप जैसे स्वर्ण लालिमा

0: जो हमारे किस्में विकसित है या हमारे स्वर्ण वैभव स्वर्ण नवीन है पुषा शीतल ये जो आपकी स्वर्ण श्री स्वर्णमणि ये स्वर्ण प्रतिभा ये सब जो बैगन की किस्में हैं तो इसमें क्या है कि हमारी उपज या चौथ और जैसे कि उसमें गोला का या पर्ण अविलंब जो है ये आप लेंगे तो इसमें क्या है कि लंबे साइज के तो ये आपकी चॉइस और मार्केट पर डिपेंड करती है कि आप किसान भाई कौन सी मार्केट प्रेफरेंस ज़्यादा वहाँ पर उसका चयन करें। जैसे फूलगोभी में आप करना चाहें तो पूषा अरली जो हमारे तीनों मौसम में होती है तो पूषा अरली पूषा दीपाली पूषा कार्तिकी पूषा सिंथेटिक ये सब अच्छी हमारी किस्में हैं। मिर्च का लें तो पूषा ज्वाला स्वर्ण प्रफुल्या हमारे यहाँ से विकसित हैं। काशी अनमोल ये भी अच्छी इसकी उपज होती है। शिमला मिर्च अर्का गौरव अर्का मोहिनी। जैसे फ्रेंच बीन करना चाहें तो पोल टाइप में स्वर्ण लता है अच्छी है 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है। या जैसे भिंडी है तो अर्का अनामिका जो हमारी जैसे येलो वेन मोजैक होती है पत्तियाँ आपकी किसान भाइयों पीली पड़ जाती है तो ये रेसिस्टेंट वेराइटीज़ होती हैं तो इसका भी आप कर सकते हैं। लोबिया में स्वर्ण मुकुट है। सोयाबीन में हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्वर्ण वसुंधरा किस्में विकसित हैं। जैसे पत्ता गोभी का लें तो पत्ता गोभी में आपका जैसे कि हमारा गोल्डन एकर है प्राइड ऑफ इंडिया है पूषा मुक्ता है तो ये सब अच्छी हैं। और साथ में अगर लत्तेदार की सब्जियां करना चाह रहे हैं तो जैसे आपका खीरा है तो उसमें स्वर्ण सीतर हमारे यहाँ की विकसित है करीब 250 से 350 क्विंटल प्रति उपज होती है। बॉटल गॉर्ड में जैसे कद्दू में जैसे अर्का बहार है या पूषा नवीन है। करेला में जैसे स्वर्ण यामिनी है पूषा दो मौसमी है। निनुआ में जैसे पूषा नसदार है या पूषा चिकनी इनकी आप सफलतापूर्वक खेती जो है कर सकते हैं किस्मों को लेकर के।
1: एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जितने सब्जियों के नाम आपने गिनाए तो भूमि का चुनाव करने में क्या कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है?
0: बिल्कुल, खासकर किसान भाइयों जब आप खरीफ की सब्जियों की खेती कर रहे हैं कि आपकी जमीन जो है उर्वरक वाली हो जिसमें जैव पदार्थ युक्त हो या जैसे कि खरीफ मौसम में खास करके जल जमाव की समस्या होती है तो आपके खेतों में जल जमाव ना हो जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो। और साथ में आप किसान भाइयों ऐसा देखें कि जब बरसात होती है तो कभी कभी क्या होता है एक बरसात दो बरसात में काफी गैप हो जाता है तो ऐसे केस में आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी अनिवार्य हो जाती है ताकि आपकी फसल को कोई तरह के पानी की कमी महसूस ना हो।
1: खरीफ की सब्जियों की पौधशाला यानी नर्सरी तो वो नर्सरी तैयार करने की क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए?
0: किसान भाइयों खास करके जब आप सब्जियों खेती करने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पौधशाला की जो आप तैयार करते हैं वो अच्छी पौधशाला में पौधे तैयार करेंगे तो इसमें बीज को उपचार कर लेते हैं या फिर उसमें आप जो लगाने की विधियां जो होती है तो उसमें क्या होते हैं आप ऐसी जगह का चुनाव करें जो कि जल जमाव ना हो और ऊंची स्थान हो साथ में जल निकास की व्यवस्था हो। और खास करके इसमें जैसे आपके उर्वरक जैसे कि फार्मयार्ड मैन्योर जो हम कहते हैं गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि इससे क्या होता है और जो आप क्यारियां बनाते हैं तो आपको कोशिश करें कि 1.25 मीटर तक की क्यारियां चौड़ी बनाएं और लंबी आपकी आवश्यकता अनुसार ताकि दोनों तरफ से बैठ के उसमें से निराई गुराई हम कर सकें ताकि इससे ये होता है। और खासकर किसान भाइयों आजकल जो अब जैसे आप पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि अब जमीन में पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उसमें क्या आजकल प्लास्टिक की प्रोट्रे आ गई है तो उसमें क्या जैसे कैविटीज अलग बनी होती है जैसे कि जो छोटी कैविटी वाली होती है उसमें आप टमाटर है बैगन है फूलगोभी है पत्ता गोभी जिसके बीज बहुत छोटे होते हैं तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप लत्तेदार सब्जियों की बीज तैयार करें उसमें बड़ी कैविटी वाली लेते हैं या पॉलीट्यूब में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोकोपीट लेते हैं और साथ में वर्मी कंपोस्ट लेते हैं दोनों की आधी मात्रा का सम्मिश्रण करते हैं और उसको फिर उससे हम मीडिया बनाते हैं उससे हम फिर बीज की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों खासकर जो आप प्रोट्रे की बात करते हैं इसमें कहीं भूमि कहीं मिट्टी हम नहीं लेते हैं तो इससे क्या होता है किसान भाइयों हमारी जो पौधशाला में पौधे तैयार होते हैं वो बिल्कुल जो कि जो बीज मान लीजिए अगर बीज से कोई जनित रोग है या मिट्टी से जनित रोग है तो वो इसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। तो आप अगर पौधशाला तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों तो खास करके प्रोट्रे का मदद से आप पौधशाला तैयार करें जो कि उन्नत विधि है और आजकल किसान भाइयों इसको अच्छे से कर भी रहे हैं।
1: तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाई इस पर जरूर ध्यान देंगे।
0: और दूसरी चीज कि जब भी आप बीज करते हैं तो उसकी जो बीजोपचार अवश्य कर लें
1: जी।
0: तो बीजोपचार में जैसे कि है आप किसान भाइयों कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि हमारा बेबिस्टीन आती है या कैप्टान आती है थायरम आती है
1: इन सब चीजों
0: तो ये 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उससे बीज को उपचारित कर लें तो इससे क्या होता है बहुत से जो बीज जनित रोग होते हैं तो वो नहीं आते हैं किसान भाइयों। खासकर इसमें आर्द्र गलन की समस्या रहती है जैसे आप देखो किसान भाइयों अगर आपने खेत में अगर लगाया हो पौधशाला तैयार कर रहे हो तो क्या होता है कि तने के पास से गलन शुरू हो जाते हैं
1: जी जी
0: तो वो उसको हम आर्द्रगलन डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहते हैं आर्द्रगलन कहते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए आप बीजोपचार जरूर करें और साथ में जैसे ब्लैटॉक्स नाम की दवा आती है तो वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रेंचिंग भी साथ साथ करते रहें तो इससे क्या होता है कि आपको आर्द्रगलन की बीमारी से छुटकारा ताकि स्वस्थ पौधे आपके तैयार हो सके।
1: इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ये है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर, तो ये भी सीमा तय करनी बहुत जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल, इसमें सब्जियों की जो संतुलित मात्रा होती है उसके मुताबिक ही आप तैयार करें, ताकि अधिक भी बीज ना डालें और कम भी ना डालें। तो इसमें जैसे हम प्रति हेक्टेयर की बात करें, जो हमारा 100 × 100 मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो उसके लिए हमें जैसे कि हाइब्रिड संकर किस्म की आप लेते हैं, तो उसमें बीज हमारी आवश्यक, जैसे टमाटर है,

0: बैगन है, इसमें करीब 250 से 300 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी लेते हैं तो उसमें क्या उसकी बीज रेट ज़्यादा हो जाती है, उसमें जैसे 300 से 400 ग्राम प्रति से बैगन के लिए है या टमाटर के लिए, जैसे फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, इसमें 500 से 600 ग्राम। जैसे आप फ्रेंच बीन लगा रहे हैं तो फ्रेंच बीन 60 से 70 किलो, जो भिंडी लगा रहे हैं तो 8 से 10 किलो, जैसे कि आप लोबिया 15 से 20 किलो, या आप लतेदार सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 किलो के आसपास आवश्यकता होती है।
1: और आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें मतलब दूरी वगैरह का भी ध्यान रखना है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बीज अगर हाइब्रिड है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है
0: जी, जी,
1: तो ये
0: जी।
1: सब चीज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: किसान भाइयों, खास करके जैसे आपकी पौधशाला तैयार है या आपकी फसलें लगी हैं, तो अभी क्या है कि जैसे उसमें संतुलित मात्रा, जो अभी अगर बेसल देना हो तो जो खेत तैयारी से डालते हैं तो उसमें उचित मात्रा में जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की मात्रा डालनी चाहिए। और इसमें सब्जियों खेती में खास करके जो है जो हमारी सरीवी गोबरी खाद है उसकी मात्रा करीब 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए, और साथ में जैसे वर्मी कंपोस्ट है उसकी भी 2.5 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें तो आपकी सब्जी में उत्पादन अच्छी मिलेगी। और साथ में क्या है कि खरपतवार निराकरण भी आप उसमें से करते रहें ताकि आपकी फसल को पोषक तत्व की कंपटीशन हमारे खरपतवार से ना हो, तो इससे भी आपके पैदावार पे असर पड़ता है।
1: चलते चलते एक और प्रश्न कि जैसे कई किसान अपना फसल लगाते हैं, सब्जी उन्होंने लगाया और कई तरह के रोग उसमें हो जाते हैं, जैसे पत्तों का पीला पड़ना या फिर उसमें जब फली आई तो उसमें रोग लग जाना, तो उनका नियंत्रण कैसे होगा?
0: खासकर किसान भाइयों, जैसे बरसात में आप देखें तो एक तो इसमें जो रोगें प्रमुख आती हैं, जैसे कि इसमें टमाटर बैगन की बात करें तो इसमें अगेती अंगमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो काले पड़ के और वो फिर पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं, तो इस तरह के जो होते हैं तो उसमें क्या है कि नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 नाम की दवा आती है, तो उसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसको कर लें। और साथ में जैसे इसमें किसान भाइयों मुरझा रोग की समस्याएं बहुत रहती हैं, जैसे किसान भाई बहुत मायूस हो जाते हैं कि जब वो जैसे टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च कोई भी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले पत्तियां जो हैं ऊपर से सूखनी शुरू होती हैं और नीचे उसकी टूसी जो होती है वो भी झुक जाती है, तो ये मुरझा रोग होता है जो कि हमारी जो मिट्टी है हमारी वो अम्लीय है। जैसे हमारे यहाँ की किस्में जो विकसित हैं, जैसे आप टमाटर की बात करें स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है, या अर्का आभा है, या बैगन की बात करें तो स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा है, तो ये सब क्या है कि उकसा रोग हमारे प्रतिरोधी क्षमता उसमें रहती है।
1: तो किसान भाई आपने सुना जो खरीफ सब्जी फसलें हैं उसे किस तरह लगाई जाए, उनकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, झारखंड में कौन कौन सी चीजों की खेती की जाए, तो डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसान भाइयों जोहार।
2: तो भाई बहन मन एखन हम रेमन सुनत रही खरीफ सब्जी फसल कर उन्नत किस्म का है और इके लगाए कर और देखभाल करे कर बारे में इके बतात रहे डॉक्टर बी के झा और इनकर से गोठियाए रहे प्रभु शरण।
3: बहुत नगद सुपर जानकारी रहे है नहीं
2: एकदम
3: रवरे हूँ ये तने के मैं आसरा करो ना तने के लगा की
2: एकदम लगा तो भाई बहन मन और रवरे हूँ लगा थी नी
3: हाँ कोशिश तो करल जाते देखो नी समय बदलत है तो हमरे के तो बदल के आए और उन्नत किस्म मन हूँ हमारे कर कृषि वैज्ञानिक मन बनाई बनाई के देवत है तो उकर प्रयोग करे के चाहिए तब नहीं जानब कि उपज कैसे होवत है। अरे हमरे तो खाली गोठियाते ही गीत गोविंद बठू हमारे मन के जाए चाहिए काले कि रोपा डोभा कर दिन चलत है और आजकल कर जे काम होवेला उकर में एकदम गीतकाई के माय बहन मन रोपा डोभा कर काम के निमरात है नी और पतो नहीं लागे ना कि थाइखी के नहीं थाइखी है नी
2: एकदम
3: खाली रवरी कहब कि गीतो सुनवाब तब
2: नागपुरी में गीत है चलो तब सुन ले लाई गीत के सुलोचना देवी और संगी मन कर गावल है
4: ये जीना बागाने हमार लागे कतगी सुंदर जीना बागाना हम जीना तो बागाने गे हम जीना तो बागाना हम लागे कतगी सुंदर सना थाना पार लहा सा लहा रे ए साना घन रे फूलो नि पार लहा

0: तो एखन हमारे मन नागपुरी में गीत सुनत रही, सुलोचना देवी और संगी मनकर गावल गीत रहे, बड़ा नगद गीत रहे, बाप रे बाप। इनकर जे बगीचा मनकर और गछ बुदा मनकर जे बखान रहे है नी, हमरे के एकदम पूर्णा पोरिया याद करवाई दलन, बहुत सुंदर
1: एकदम नगद गीत रहे।
0: और मनीष भाई देखो आज के लिए सब कोई कोशिश करत है कि हमरे कर जीव जहान बढ़िया रहो, पर्यावरण बढ़िया रहो, तो एक देखो हमरे मन आज के लिए रासायनिक माइंड मनकर रासायनिक कीटनाशी दवाई जे है उकर कम प्रयोग करे कर कोशिश करत थी है नी
1: एकदम।
0: काले कि हमरे मन रासायनिक माइंड के लगाई लगाई के माटी के बिगड़ाई देव थी, और रासायनिक कीटनाशी दवाई लगाईला तो देखो बरने बरन कर नवा नवा बीमारी होवत है,
1: पसरत है।
0: हाँ, और पर्यावरण प्रदूषित होवत है।
1: हाँ,
0: तो बहुत एकन किसान मन ए बट कदम बढ़ाई दे हैं और दोसर के समझात हुआ है, अपने मन हूँ करत है कि जैविक खेती करल जाए।
1: तो एकदम हमरे मन के जाने के चाहिए कि जैविक खेती से हमरे मन के का का फायदा है, और किसान मन जैसन खेती करत है उमन से प्रेरणा लेवे के चाहिए।
0: हाँ, तो चलो तब गोटे किसने किसान है कमल कुजूर जे की जैविक खेती खुद करे ना और दूसर क्यों जैविक खेती करे के लिए कहे ना और बताए ना कि जैविक खेती से का फायदा है।
1: एकदम, तो चलो कमल कुजूर से करल गोइट के सुन लेविला, और इनकर से रावरे गोठियाई।
2: हमारे साथ एक किसान है, नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
3: मैं कमल कुजूर रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड से हूँ।
2: कमल भाई, आपने कहा कि आप बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत गांव से आते हैं और आप जैविक खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की बात है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी ये सब चीज की जा रही है। तो जैविक खेती के लिए आप किसानों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, क्या किसानों का रुझान दिखता है?
3: जैविक खेती के प्रति लोगों का रुझान बिल्कुल है, लेकिन ये चीज़ जो है किसान लोग अभी तुरंत ही इसको शुरुआत करने में थोड़ा सा दुविधा में है, क्योंकि जैविक खेती एक हम लोग करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं खेती होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो लोग दुविधा में है। लेकिन हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, और अगर फसल का उत्पादन थोड़ा कम होने जैसा लगता है तो आप हल्का मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट में जैसे हम लोग पीट तैयार करवा रहे हैं किसान लोग का ही सहयोग से, वे लोग पीट तैयार करते हैं, उसके बाद 15 से महीना दिन का जो पुराना गोबर है उसको हम लोग पीट में डलवाते हैं, उसके बाद हम लोग केचुआ उपलब्ध कराते हैं और उसमें केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उसको निकालना है, कैसे उसका देख रेख करना है, उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जैसे बरसात के दिन में जितने भी हरा घास फूस है उसको जमा करके गड्ढा खोद के उसको कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए बारे भी हम लोग बता रहे हैं।
2: ये बताएं कि अगर कोई किसान इसको बनाना चाहे तो वो केचुआ कहाँ से लेगा, और थोड़ा बनाने की विधि को थोड़ा बता दें।
3: बनाने की विधि जो है, जैसे पीट तैयार हो गया और वही 15 दिन का पुराना

0: गोबर जिसमें कि पानी का अंश कम हो, और कच्चा या ताज़ा गोबर देने से गोबर में गर्मी आ जाती है, गर्मी आ जाने से केचुआ मर जाता है। इसलिए 15 दिन का जो पुराना गोबर 15 से महीना दिन का वो गोबर को उसमें दिया जाता है। उसके बाद उस गोबर में जितना भी छोटा मोटा पुआल का चूर्ण, घास का टुकड़ा, सूखा पत्ता, ये सबको मिला दिया जाता है। और खाने का जो सामान है जैसे बीन का छिलका, पपाया का छिलका, पालक का छिलका, या मान के चलिए फूलगोभी या बंद गोभी का पत्ता, ये सबको गोबर खाद में मिलाया जाता है, और जिसको कि आसानी से केचुआ खा सके। और केचुआ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो 45 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाता है।
1: ये बताएं कि आपने कहा कि 45 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाता है। एक किसान अगर अपने खेत के लिए, मान लिया उसके पास 5 एकड़ खेत है और उसके लिए उसको पूरा करना है वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो कितना पिट बनाना होगा?
0: 1 एकड़ में खेती करने के लिए पिट का आकार बड़ा करना होगा, कम से कम मान के चलिए 8 पिट बनाना होगा और बड़ा साइज का बनाना होगा
1: 1 एकड़ के लिए।
0: 1 एकड़ के लिए
1: ये केचुआ कहाँ से वो लेंगे? ऐसा ही तो जो खेत में मिलता है वो केचुआ तो नहीं डाला जाता है कि डाला जाता है?
0: केचुआ जो है उन्नत किस्म का केचुआ है, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है मुराबादी में, वहाँ से लिया जा सकता है, या तो अनगड़ा में उसका फार्म है रामकृष्ण मिशन का, वहाँ से मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, जो टीडा फोटीडा कहा जाता है केचुआ का नाम। केचुआ को रखने के लिए लाल किस्म की एक छोटी चिट्टी होती है, वो चिट्टी उसका बड़ा दुश्मन है, इसलिए चिट्टी उसमें केचुआ पीठ में प्रवेश ना करे, नहीं तो अगर प्रवेश कर जाएगी चिट्टी तो केचुआ को पकड़ के ले जाता है चिट्टी। तो उसके लिए जो केचुआ पीट बनता है तो पीट का किनारे किनारे भाग में थोड़ा सा जो गड्ढा किया जाता है उसमें पानी रखा जाता है, ताकि उस पानी से पार होके चींटी ना जा सके केचुआ पीट में।
1: प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, और अगर जरूरी है इसको बनाने के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है तो हमारे किसान भाई कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
0: केचुआ खाद बनाने के लिए अगर प्रशिक्षण लेना है तो कोई भी NGO के लोग, NGO से संपर्क करना होगा, और यह तो रामकृष्ण मिशन जो मुराबादी में है वहाँ ट्रेनिंग होता है।
1: आप कहीं लिए थे प्रशिक्षण?
0: हम तो ट्रेनिंग लिए हैं, प्रशिक्षण NGO के माध्यम से ही लिए हैं।
1: कमल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि जैविक खेती आज की ज़रूरत बन गई है, और हमारे स्वास्थ्य को देखकर अगर हम जैविक खेती को आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। कई तरह की नई बीमारियां आ रही हैं, इससे भी हम बच सकते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: तो एखन भाई बहन मन हमरे मन कमल कुजूर से करल गोइट के सुनत रही, ई जैविक खेती करेना, और इनकर से रावरे गोठियाई रही।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो भाई बहन मन बताए खोजिला, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
7: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर। तो किसान वाणी कार्यक्रम से रावर मनक रेडियो संगी करण भाई और
6: मनीष भाई के देव विदा
7: जोहार।
8: जी हाँ श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, और श्रोतों स्टूडियो के घड़ी में 6:30 हो चुके हैं। तो ये सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। श्रोतों आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे अरहर में कीट प्रबंधन, साथ ही साथ सुनेंगे आज की बात विषय है कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियां, और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार से लिखी भेंटवार्ता। विषय है उद्यान एवं वानिकी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार, और आज की नसीहत के साथ साथ आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओ कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं अरहर में कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओ, अरहर को हम तुर या तुअर भी कहते हैं,

और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरहर रहर भी हम कहते हैं श्रोताओं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। हालांकि इसमें भी कई प्रकार के कीट व्याधियां लगते हैं जिनमें कि फूल फलियां दाने जो है वो सभी इससे प्रभावित होते हैं और इसके कारण से उत्पादन में भारी कमी हो जाती है। श्रोताओं, यदि अरहर की खेती में यदि हम समेकित कीट प्रबंधन यानी कि IPM को अपनाएं तो कीटों को आर्थिक क्षति स्तर से काफ़ी नीचे रखा जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, इससे काफ़ी हम कम अपने को नुकसान होने से रख सकते हैं यानी कि काफ़ी हद तक अपने फसल को हम सुरक्षित कर सकते हैं। श्रोताओं, देखा गया है कि रहर की खेती में फली छेदक, फली मक्खी, पत्ती मोड़क, चेम्पा, सफ़ेद मक्खी और तना मक्खी जैसे कीट पाए जाते हैं। हालांकि इसमें सबसे जो नुकसानदेह है वह है फली छेदक, जो कि फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसकी सूढ़ियाँ फूल और फलियों में छेद करके अंदर के दाने को खाती है, जिससे निश्चित रूप से श्रोताओं काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए श्रोताओं, खेत की तैयारी और फसल का प्रबंधन हमको शुरू के दिन से ही करना सुनिश्चित कर देना चाहिए। इसमें स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी में जितने भी प्रकार के छिपे हुए कीट होंगे या अंडे होंगे या प्यूपा होंगे, जो कुछ भी होंगे जो हमारे फसल के लिए हानिकारक हो सकते हैं, वे सारे के सारे खेत की गहरी जुताई के कारण नष्ट हो जाते हैं। और समय पर बुआई करने पर अधिक घनी बुआई से भी हम बचते हैं। जो श्रोताओं, और साथ ही साथ खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखना भी आवश्यक है। खरपतवार को समय समय पर निकालना भी जरूरी पड़ता है। श्रोताओं, साथ ही साथ प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना जरूरी है। जो श्रोताओं, वैसे क्षेत्र जहाँ पर रोग और कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वैसे स्थिति में रोग और कीटों के प्रति सहनशील या प्रतिरोधक जो अरहर की जो उन्नत किस्म है उनका चयन करना चाहिए। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर जो निर्भरता है श्रोताओं वो प्रायः कम हो जाती है। साथ ही साथ फसल में कीटों को नियमित रूप से निगरानी करना चाहिए, विशेष रूप से फूल आने के समय और फलियाँ बनने की अवस्था में मुख्य रूप से दो बार इनकी निगरानी जरूरी हो जाती है। सप्ताह में कम से कम दो बार पौधों के जांच करें, उसकी पत्तियां, फूलों और फलियों पर किसी प्रकार के अंडे या छोटी सूढ़ी या छिद्र दिखाई दे तो तुरंत उस पर नियंत्रण का उपाय अपना लें। फली छेदक की निगरानी और नियंत्रण के लिए श्रोताओं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। प्रायः 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। इससे नर पतंगों की संख्या का अनुमान भी लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रकोप की स्थिति में ट्रैप की संख्या को भी आप बढ़ा सकते हैं। श्रोताओं, प्रति हेक्टेयर 5 ट्रैप का उपयोग करें। साथ ही साथ देखा गया श्रोताओं कि पंछियों की भी कई बार में खेत में बड़पच यानी कि टी आकार की लकड़ी की घूंटियां लगाने से भी कीट भच्छी जो पंछियों को बैठने का स्थान मिल जाता है और पंछी जो हैं वो सूंडियों को खाकर प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायता करती है। तो श्रोताओं, अरहर की खेत में यदि हो तो टी आकार की लकड़ी की घूंटियां भी लगाएं। अरहर में जैविक कीटनाशकों का प्रयोग काफी सुरक्षित माना जाता है। श्रोताओं, इसमें नीम आधारित उत्पाद अजाडिक्ट्रिन का प्रयोग करें तो इसका काफी लाभ मिल पाता है। श्रोताओं, साथ ही साथ कीटों से प्रभावित फूलों और फलियों को तोड़कर नष्ट न करें। खेत से जो भी गिरते हैं संक्रमित पौधे उनको उस अवशेष को नष्ट कर दें। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में अंडे या जो छोटी सूढ़ियों को हो उसे हाथ में कटकर नष्ट करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें श्रोताओं कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इनको नष्ट करें। कीटों का ज़्यादा प्रकोप होने से श्रोताओं आर्थिक क्षति बढ़ जाती है, इसलिए अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। फली छेदक के नियंत्रण के लिए स्थानीय जो भी कृषि विभाग हो या कृषि विश्वविद्यालय हो वहाँ से अनुशंसित दवा का पता करें, जानकारी लें और उनके सलाह पर ही दवा का बार बार प्रयोग करें, जिससे कि सही क्रम पर दवा का उपयोग किया जा सके और आपकी फसल जो है वह सुरक्षित हो सके। श्रोताओं, कीटनाशक के छिड़काव के दौरान इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप अपने रहर की खेत में छिड़काव करते हैं तो ज़्यादा तेज़ हवा ना चले, अत्यधिक गर्मी या बारिश की संभावना ना हो, फूल आने के समय मधुमक्खियां या फिर

0: परिच और नीम आधारित जैविक उपाय का उपयोग करना, और इन सब चीज़ों को जब हम मिलाकर करते हैं तो इसका प्रभावी और टिकाऊ कीट प्रबंधन होता है श्रोताओं। इसमें उत्पादन के लागत में भी कमी आती है, पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाती है और रहर की अच्छी उपज भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि देखा जाए तो अरहर के कीट प्रबंधन में थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी समझदारी का विषय है और करते हैं तो जैसा, और साथ ही साथ रहर जो है वो काफ़ी प्रोटीन सहित कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और बाज़ार में लगातार इसकी मांग बनी रहती है, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी सुरक्षा भी जरूरी है, अपने कीटों से या व्याधियों से इस फसल का सुरक्षा करना। तो श्रोतों, में तो थी बातें कि अरहर में कीट प्रबंधन, और आइए सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है उद्यान और वानिकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे उद्यान और वानिकी की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि उद्यान और वानिकी के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर पा सकते हैं।
2: किसान भाइयों, आप पूरे झारखंड में कहीं भी रहने वाले हों, खास करके पलामू, गढ़वा और लातेहार की बात हम लोग करें, तो मुझे जो यहाँ पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में 20 साल रहते रहते हो गया है, हमें लगता है कि कृषि क्षेत्र में अपनी आय को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए, अभी देखिए कृषि में जो क्षेत्र में हम लोग आय उतना अच्छा नहीं आने के चलते हमारे नई युवा पीढ़ी के लोग जो है उसे जुड़ नहीं रहे, विमुख हो जा रहे हैं। नई युवा पीढ़ी बाहर कमाने चले जा रहे हैं और कृषि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और कृषि में भी लाभप्रद उतनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसी साल वर्षा हुई तो अच्छी खेती हुई, और नहीं हुई तो वो भी खराब हो गई। तो एक तरह से ये ऐसा लगता है कि हमें जितना से जितना इससे आय प्राप्त हो, तब नया युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे और हमारी भी स्थिति को सुदृढ़ होगी। हमें लगता है कि हमारी जो जलवायु है, यहाँ की जो मौसम है, यहाँ की जो वर्षापात है और यहाँ की जो मिट्टी है, ये सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर अगर किसान उद्यान के क्षेत्र में यानी फलदार वृक्षों के क्षेत्र में और वानिकी मतलब फॉरेस्ट के क्षेत्र में अगर हम लोग बांस की चर्चा कर लें, हम लोग सागवान की चर्चा कर लें, अगर इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर अगर कोई कृषि का कार्य करते हैं तो यह कृषि का कार्य सर्वोत्तम कार्य है, और उसमें से जो लाभ प्राप्त होगा आप सोच नहीं सकते हैं कि 5 से 6 लाख रुपया प्रति एकड़ आय, जहां पर हम लोग 10 से 20 हज़ार धान की खेती में आय सृजित करने में पसीना छूट जाता है, किसी साल वो हुआ किसी साल नहीं हुआ, बीज भी हम लोग देखते हैं कि खेतों में डाले और बीज भी चला जाता है। इन क्षेत्रों में इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्राकृतिक रूप से हमारे जो जंगलों में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर नेचुरली रूप से या इन चीज़ों को खेती करके आगे कर सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी किसान के पास में रकवा है 1 एकड़ का, तो आप अपने खेतों में जो किनारे के ज़मीन में आप अगर सागवान की बात हम लोग कर रहे, सागवान मतलब टीक
1: जी,
2: और हम लोग जो है बांस, ये दो चीज़ ऐसी है, बांस की खेती भारत सरकार ने बांस को जंगल से मुक्त कर दिया है और बांस को लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है कि अगर बांस लगाएंगे तो सरकार आपको पैसा भी देगी। तो ये बांस इस तरह है कि बालकोआ प्रजाति का बांस जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है और 4 साल के बाद ये रिटर्न देना शुरू करता है। किसान भाई, कोई ऐसी खेती नहीं है कि जो कि एक बार लगाएंगे तो 50 वर्षों तो आप सिर्फ काटने जाएंगे, लगाने में जो है 4-5 वर्ष में ये बांस जो है आय प्राप्त करने देने लगता है और हमें बहुत अच्छा प्राप्त कर। ये सब बांस जो है किसान भाई टिशू कल्चर लेबोरेटरी से तैयार होता है। अब जो नई खेती आ गई है, किसान अगर तकनीक के सहारे आगे नहीं बढ़ा, जो नवीनतम तकनीक कृषि में जो आए हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएगा तो आय से वंचित हो जाता है। तो ये तकनीक इतनी फास्ट तकनीक है, जो हम लोग सागवान की बात कहें, ये अमूमन सागवान आप सुनते होंगे कि ये 40 वर्षों में तैयार होता है जो हमारे खेतों में है, और एक में से 8-10 ब्रांच होते हैं तो उसका वैल्यू उतना नहीं आ पाता है लकड़ी का। लेकिन जब

0: आप इस सागवान की बात करेंगे, टिशू कल्चर लेबोरेटरी से उत्पादित सागवान, जो कि आपको 80 से 90 रुपया में, 70 रुपया में, जो भी पैसे में प्राप्त हो आपको अगर मिल जाती, तो यह सागवान प्रथम वर्ष में जो है 15 से 20 फीट चला जाता है। ये मैंने पलामू के बहुत किसानों के पास में ये टिशू कल्चर लेबोरेटरी का सागवान लगाया है और इसकी ग्रोथ जो है ये 20 साल में तैयार हो जाता है। ये बांस सागवान की खेती करना लोग इसलिए दिक्कत, दो चीज़ों के चलते दिक्कत समझते हैं। एक तो इसको काटने में लगता है कि इसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बहुत ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप CO को लिख के देंगे आवेदन और अपने आवश्यकता को बताएंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा। लेकिन परमिशन मिलेगा ये 20 साल में, 15 से 20 साल में ये तैयार हो जाती है। तो जो ये सागवान जो है लगाएंगे, दो दो मीटर की दूरी पर आप लगाएंगे, बांस को भी जो है हम लोग जो है चार चार मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो ये किनारे किनारे पर आप दो या तीन लाइन अगर एक एकड़ का खेत है तो उसके चारों तरफ आप लगा देते हैं, तो ये 20 वर्षों के बाद में जो सागवान जो वैल्यू देगा वो बहुत करोड़ों रुपया में आपको देगा, लाखों रुपया से करोड़ों रुपया, क्योंकि सागवान बहुत कीमती है। अब हम लोग कोई भी किसान 20 साल तक इसका इंतजार करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो इसके बीच वाले जो एरिया है उसमें हम लोग फलदार वृक्ष की खेती करेंगे। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी किसान यहाँ पर कर रहे हैं पहले से, अगर फलदार वृक्ष में अमरूद की बात करें, अब ये अमरूद जो है हमने बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं, लगाते हैं वो अमरूद, और ये जो अमरूद है थाईलैंड गुआभा, थाईलैंड ताइवान पिंक गुआभा, ये ऐसे अमरूद हैं खेती हैं, आप अमरूद की खेती कर सकते हैं, आप जो है किन्नू की खेती कर सकते हैं, आप मौसमी की खेती कर सकते हैं, आप कटहल की खेती कर सकते हैं। ये सब फलदार वृक्ष जो है सब हाइब्रिड नस्ल के होते हैं और छोटे प्रजाति के होते हैं, और ये 6 मंथ में 6 महीना में ही फल देना शुरू कर देते हैं, तो इसका वेटिंग पीरियड नहीं है। कहने के मतलब पौधा लगाएंगे और हमको 4 साल 5 साल में फल देगा तो उससे उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारे पौधे जो है छोटे प्रजाति के हैं और ये जो है 2.5 मीटर की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, और जो है लगाने में 1 से 1.25 लाख रुपये एकड़ का खर्च होता है, और अगर हम लोग आय की बात करें तो 2 वर्षों के बाद ये 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी। ये किसान पलामू में हरिहरगंज छतरपुरी ये सब एरिया में किसान कर रहे हैं, 50 एकड़ में कर रहे हैं, कोई 40 एकड़ में कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और ये ऐसे है कि वर्ष में 3 बार इस ये फसलों को अमरूद की देते हैं, और यह जो नस्ल ताइवान पिंक की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में भी लगा हुआ है, प्रयोग के तौर पे हम लोगों ने बहुत इसको कर रहे हैं, और ये जो अमरूद है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है, ये 50 रुपये केजी के हिसाब से आप होलसेल में आप मार्केट में बिक सकते हैं। तो विपणन की भी समस्या नहीं है, कि आप विपणन में आप ऐसे लग लें कि अगर कोई किसान इसको लगाता है तो ग्राहक जो खरीदने वाले हैं उनके घर आते हैं, इसीलिए उनका रेट भी अच्छा मिल पाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मौसमी में हम लोग जो है नटाल प्रजाति का जो है हम लोग मौसमी को लगवाए हैं नागपुर से लाकर, और यहाँ पर यह बेहतरीन कर रहा है। तो इस तरह की खेती अगर करते हैं और साल में 2 बार हमको मौसमी किन्नू मिलता है और अमरूद 3 बार मिलता है, तो इस तरह से हम लोग 4 से 5 लाख रुपया प्रति एकड़ अगर आय करते हैं। थोड़ी सी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसके लिए हमको घेराबंदी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फलदार वृक्ष हैं तो आप इनको नहीं घेराबंदी करेंगे तो चोरी होने की थोड़ी बहुत समस्या होती है, जानवरों से समस्या होती है, तो इसकी घेराबंदी की में थोड़ा सा ध्यान देंगे। और घेराबंदी के लिए अब जो है यहाँ पर भी फैक्ट्री लग गई है पलामू आसपास में, कि आप तार के लिए खरीद के कर सकते हैं और 5 फीट की चौड़ाई लेंथ की घेराबंदी करके खेती कर सकते हैं। तो वही वहाँ की जलवायु और यहाँ का मौसम, पलामू की भी मौसम उतना ही बेहतरीन और बहुत अच्छा है। हम यहाँ के किसान भी 5 से 6 लाख रुपया एकड़ का कमा रहे हैं और कमा सकते हैं इन दोनों चीज़ों को सहारा लगे। आप बानकी की फसलों को लगा के किनारे में आप लगा लें और बीच में जो है फलदार वृक्षों की लगा लें, और बीच में अगर 1 या 2 वर्ष तक सब्जी की खेती करें, यानी 3 टायर सिस्टम में अगर खेती करते हैं तो आप 4 से 6 लाख रुपए देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है, लेकिन ये हम लोगों ने किसान ने इसको पा चुके हैं और इसके बहुत बड़े पैमाने पर हर साल इसको फैला रहे हैं। तो ज़रूरत है किसान भाई जागरूक होने की, ज़रूरत है इस चीज़ों को जाके देखने की और अपने खेतों में उतारने की। मैं तो यूँ कहूँगा कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में ये सारे चीज़ लगे हुए हैं, आप आए वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, देखें, और पौधों की भी व्यवस्था जो है आने वाले समय में हम लोग जो कि अभी हम लोग नागपुर और साउथ से मंगा रहे हैं, जो कि वो हब बना हुआ है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से उत्तम क्वालिटी के पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्रश्न उठता है

0: कि हमारे किसान भाई किन किन पौधों की खेती कर सकते हैं, खासकर अमरूद की बातें तो हमने कर ली, और यहाँ किसके लिए जलवायु अनुकूल है?
1: किसान भाइयों, फलदार वृक्षों की बात करें तो हम लोगों ने बताया कि मौसमी की बात करें, किन्नू की बात करें, संतरा की बात करें, अमरूद की बात करें, कटहल की बात करें। अच्छा। और ये जो कटहल हम लोग देखते हैं किसान भाई, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि कटहल जो लगाते हैं तो 7 वर्षों में फल देता है। ये वियतनाम प्रजाति का कटहल जो है कि 1 ईयर 1 साल में ये फल देना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे फल देना शुरू करते हैं जो कि मार्केटेबल है, आसानी से बिक जाते हैं बाजार में। तो ये सारे चीज़ें जो है सब उपलब्ध हैं और अच्छे क्वालिटी के उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में ये सब क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी उपलब्ध।
0: और वानिकी से छुट्टी हुई कोई बात है?
1: वानिकी से छुट्टी हुई, इसकी प्रबंधन की बात हम लोग जब करेंगे तो प्रबंधन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और इसमें जो जिसमें बात की है कि कभी भी अपने खेतों में लगाएंगे तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। टिशू कल्चर लेबोरेटरी की जो पौधे हैं उसमें ब्रांचिंग शुरुआत में लगेगा, थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा हो, लेकिन लेबोरेटरी में इतने अच्छे पौधे तैयार हो रहे हैं कि आप इसको लेकर ड्रैगन फ्रूट्स की भी खेती हम लोग जो है कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को जो नई टेक्निक्स हाई जो रेट्स से रिटर्न के पौधे हैं इसको आप लगाएंगे और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर थोड़ी सी पानी की भी व्यवस्था हो और घेराबंदी व्यवस्था कर हम इससे आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि हमारे किसान भाई खाली पड़े जो जगह है वहाँ पर अंतर्वर्ती भी कर सकते हैं, सब्जियाँ भी लगा सकते हैं।
1: हाँ, सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों की खेती में जो है 2 महीने में रिटर्न आने लगता है। फलदार वृक्षों की खेती में मैंने बताया कि 6-6 महीने में आने लगता है। इस तरह से हमको लगता है कि कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है खेती में, कुछ पैसा लगाता है तो उसको आय जब प्राप्त होना शुरू होता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और खेती को अच्छे ढंग से वो करते हैं।
0: अगर हम मिट्टी की बात करें कि हमारे किसान भाई किस तरह की मिट्टी में इसे कर सकते हैं?
1: किसान भाइयों, अमूमन हम लोग जो फलदार वृक्ष या वानिकी की बातें करते हैं तो जितने भी चीज़ें हैं बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसे सभी मिट्टी में ये काम खेती की ये हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें जो ग्रोथ है बढ़वार जो होती है बलुई दोमट मिट्टी जो है और जो कि पूरे पलामू और गढ़वा इस सब क्षेत्रों में हमारे यहाँ उपयुक्त बड़े पैमाने पर मात्रा में पाई जाती है, तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
0: आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और हमारे किसान भाइयों को उद्यान एवं वानिकी से जुड़ी जानकारियां साझा की उनके साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय था उद्यान एवं वानिकी और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब ये जानते हैं आज की बात में, आज की बात का हमारा विषय है कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां। जी हां श्रोताओं, कृषि फसल में कीट रोग और खरपतवार प्रायः हर फसल में लगते हैं और लगने के पश्चात फसल की बर्बादी, उनका नुकसान होना भी लाजमी है। तो वैसी स्थिति में यदि नुकसान को कम करना है तो निश्चित रूप से कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा, चाहे वो जैविक हो चाहे वो रासायनिक हो। बात करते हैं हम जब जैविक की जगह रासायनिक की, तो इनका उपयोग सही मात्रा में, सही समय में और सही विधि से किया जाना चाहिए। इससे फसल की सुरक्षा भी हो जाती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है स्वतः। लेकिन थोड़ी सी अगर लापरवाही बरती जाए तो इसका दुष्प्रभाव हमारे किसान भाइयों पर, पशु पक्षियों पर, पर्यावरण पर और साथ ही साथ जो भी इसका उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रोताओं, सही कीटनाशकों का हमेशा चयन करें, कीट के अनुसार ही अनुशंसित कीटनाशक का चयन करें, बिना पहचान के किसी भी कीटनाशक का उपयोग न करें, कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की सलाह भी ले लें। कीटनाशक के पैकेट या बोतल पर दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ें, उसमें दी गई मात्रा, फसल, लक्षित कीट, पानी की मात्रा और प्रतीक्षा अवधि का भी ध्यान रखें, उसका पालन करें। श्रोताओ, हमेशा निर्धारित मात्रा में ही कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक के उपयोग करने से कीट नियंत्रण बेहतर नहीं होते हैं, वहीं इसका दुष्प्रभाव फसल, मिट्टी, उपयोगकर्ता और पर्यावरण को इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। कम मात्रा में भी प्रभावी नियंत्रण नहीं मिल पाता है श्रोताओं, इसलिए निर्धारित मात्रा में ही कीटनाशकों का उपयोग करें। कीटनाशक मिलाते या छिड़काव करते समय हाथ में दस्ताने, मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े, जूते और आंख की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें। छिड़काव के दौरान हाथ से चेहरे या आंखों को बिल्कुल ही न छुए। छिड़काव हमेशा हवा की दिशा को ध्यान में रखकर करें। तेज हवा में छिड़काव न करें, इससे कीटनाशकों की जो बूंदें हैं वो उड़कर स्वयं छिड़कने वाले यानी कि जो भी किसान भाई है उन पर, आसपास के लोग, पशुओं या अन्य फसलों पर पहुंच सकती है। इसलिए छिड़काव करते समय हवा की गति का जरूर ख्याल रखें। बारिश की संभावना हो तो छिड़काव न करें। ज़्यादा गर्मी में भी छिड़काव से बचना चाहिए। सुबह या शाम का समय प्रायः कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। हालांकि उत्पाद के जो लेबल है उस पर दिए गए निर्देशों को जरूर प्राथमिकता दें, उसका ध्यान रखें। भोजन और पानी को हमेशा इस कीटनाशक से दूर रखें। पशु चारा हो या पीने के पानी हो उसके पास बिल्कुल ही ना रखें। साथ ही साथ बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर रखें, सुरक्षित और हवादार स्थान पर रखें। बिना विशेषज्ञ के सलाह के अलग अलग कीटनाशकों या उर्वरक का आपस में ना मिलाएं, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। कीटनाशकों के उपयोग के पश्चात उसके जो भी खाली डब्बे हों, बोतल हों या पैकेट हो, उसका उपयोग पानी, तेल या अन्य खाद्य पदार्थ के लिए कभी ना करें। खाली कंटेनर को स्थानीय जो भी नियम हो या जो भी उत्पाद के निर्देश हो उसके तरीके से उसका निपटारण करें, उसे नष्ट करें। श्रोताओं, कीटनाशक के छिड़काव के पश्चात फसल की कटाई या सब्जियों की तुड़ाई से पहले उसकी जो प्रतीक्षा अवधि होती है उसे पूरा होने दें। इससे खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष कम करने में प्रायः सहायता मिलती है। छिड़काव के पश्चात चेहरा और साबुन को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोएं और इस्तेमाल किए गए जो भी कपड़े हैं श्रोताओं उसको अलग से धोएं। छिड़काव के तुरंत बाद खेत में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो कीटनाशक जो भी हम उपयोग करते हैं कृषि उत्पादन के लिए एक काफ़ी अच्छा साधन माना जाता है। वहीं इनका उपयोग आवश्यकता के आधार पर सही कीटनाशक, सही मात्रा और सही समय के साथ साथ सुरक्षित विधि से करना जरूरी है। समेकित कीट प्रबंधन अपना करके भी हम रासायनिक कीटनाशकों का अनावश्यक उपयोग को हम कम कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाई, हमारे उपभोक्तागण और पर्यावरण, इन सभी चीज़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है श्रोताओं कि समेकित कीट प्रबंधन को अपनाएं, जैविक कीटनाशकों को अपनाएं और इसके पश्चात भी अगर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना हो तो उस दवा के जो भी पैकेट है उसके लेबल के दिशा अनुसार ही कार्य करें और अपने शरीर को पूरे कपड़े से सुरक्षित रखें, तभी इस कीटनाशक का छिड़काव करें। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें कीटनाशक के उपयोग में सावधानियां। और अब चलते चलते हम आपको बता दें डाल्टनगंज का आज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का प्रतिशत 75 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ आज की इस ग्रामीण सभा से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जेपीएससी पीटी में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से छात्रों की झड़प। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। कहा, महापुरुषों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना हमारी जिम्मेदारी। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनटीपीसी वाहन फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, प्रिंस खान गिरोह से जुड़े तार। और आदिवासी महोत्सव के लिए रांची तैयार, मोरहाबादी में देशभर से जुटेंगे 5000 से अधिक कलाकार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रदर्शनकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।

0: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने तथा प्रश्न पत्र से लेकर ओएमआर स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई है। इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। स्टेडियम में छात्रों ने गीतों के माध्यम से भी अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता उनका संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में व्यापक और पारदर्शी सुधार शामिल हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए।
2: कर रही है और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि कोई एक सेंटर से पूरा परीक्षार्थी आ जाता है, पास कर जाता है। तो मैंने इस तरह की बहुत ही अनियमितताएं हैं, जिस तरह ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उनको एग्जाम का जिम्मा सौंपा हुआ है, कंपनी के जो लोग हैं वो खुद एग्जाम पास कर रहे हैं, तो इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है और उसके बाद सरकार इस तरह से चुप रहना सही नहीं है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी खबरों के प्रकाशन से पहले तथ्यों और जमीनी स्थिति का सत्यापन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान संख्या को पहले से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जहां मकान संख्या नहीं है वहां दावा आपत्ति अवधि में बीएलओ द्वारा नोशनल नंबर दिए जाएंगे। साहिबगंज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी विजय कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
4: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है।
5: चूंकि हर साल आज के दिन लगभग सुबह से लेकर शाम तक एक महान आंदोलनकारी, एक महान

0: योद्धा के याद में यहाँ लोग आते हैं और शहीद निर्मल महतो जी के बारे में कुछ भी कहें बहुत कम होगा, लेकिन एक बात जरूर हमेशा कहूंगा, जब तक चांद सूरज रहेगा निर्मल महतो तेरा नाम याद रहेगा।
1: गोड्डा रेलवे के लिए बड़ी सौगात के रूप में कोचिंग डिपो का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर गोड्डा रेलखंड का निरीक्षण कर गोड्डा में निर्माणाधीन कोचिंग डिपो का जायजा लिया।
2: पानी भर जा रहा है, उसका आरओबी से कोई लेना देना नहीं है, वो हम उसके एक बार देख लेंगे, क्योंकि अभी तक वो ओपन लाइन को हैंडओवर नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास ही है, तो एक बार उसको हम लोग देख लें और जो भी उसको उपाय करना है वो हम लोग कर देंगे।
1: हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि इन अपराधियों से पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास एनटीपीसी की कोयला उत्खनन गाड़ी पर फायरिंग की घटना में संलिप्तता सामने आई है।
3: हजारीबाग जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें बड़का गांव में 13 माइल में फायरिंग की घटना जो प्रिंस खान के ग्रुप के द्वारा की गई थी, उसमें तीन लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें कि अंकित कुमार पांडे, ओम प्रकाश पांडे और कुणाल कुमार पांडे हैं, और उसके अलावा प्रिंस खान और राहुल दुबे जैसे ग्रुप्स को आर्म्स देने के लिए कर्मा कुमार साहू जो कि रामगढ़ का है उसकी भी गिरफ्तारी कल की गई है।
1: लोहरदगा में सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और मैट्रिक इंटर के परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए अकील एडपा बेहतर शिक्षा की ओर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की पहल पर जिले के 55 उच्च विद्यालयों और 22 प्लस टू विद्यालयों को प्रशासनिक पदाधिकारियों ने गोद लिया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में देश भर से 5000 से अधिक कलाकारों के शामिल होने की उम्मीद है। कलाकार पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कला की प्रस्तुति देंगे। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जेपीएससी पीटी में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस से छात्रों की झड़प। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। कहा, महापुरुषों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना हमारी जिम्मेदारी। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनटीपीसी वाहन फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार। प्रिंस खान गिरोह से जुड़े तार। और आदिवासी महोत्सव के लिए रांची तैयार। मोरहाबादी में देश भर से जुटेंगे 5000 से अधिक कलाकार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आजकल।
5: जिले में आजकल प्रस्तुत है। जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद के अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बसाए गए बेलगड़िया टाउनशिप में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए BCCL, JRDA, हिंडालको इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ धनबाद जिला प्रशासन ने करार किया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि संभवतः सितंबर महीने में यहां टेक्सटाइल फैक्ट्री की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।
2: प्रयास तो यही है, अभी ट्रेनर्स का हायरिंग शुरू हो गया है। प्रॉपर स्किल या एजुकेशन चाहिए जिस पद पर, वो तो अगर

0: मिल जाएगा तो प्राथमिकता के तौर पर बेलगड़िया का होगा, और नहीं मिलेगा तब हम लोग बाहर से लेंगे। किंतु जो अनस्किल्ड लेबरर्स बोलिए या अनस्किल्ड बोलिए, उनको अगर हम लोगों को करना है तो उनको स्किलिंग करा के बेलगड़िया के लोगों को ही वहां पर रोजगार देने का प्लान है, ताकि जो लोग विस्थापित होके हैं उनको एक परमानेंट फिक्स आए और कौशल विकास हो सके।
1: जिला प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह है। बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले अरविंद कुमार और उपेंद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना से आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बेहतर होगा।
2: प्लास्टिक का भी उद्योग लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर बोतल कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है, बहुत जल्दी उसका भी प्रक्रिया हो गया है, बहुत जल्दी उसका भी जगह विस्थापित होकर के 2016 में आए थे हम लोग, डीवी रोड पर हुई थी। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है डीसी साहब के द्वारा, तो पहल कर रहे हैं, इन पर लेबरिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
1: भाजपा की ओर से 10 से 14 अगस्त तक जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग तिरंगा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें संगठन की ओर से यह मुहैया कराया जाएगा।
3: कार्यक्रम के निमित्त हमारे तैयारी पूरे जोर शोर के साथ हमारे कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, हम संत रविदास जी के जीवनी पर व्याख्यान भी करेंगे, तो एक इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी के लिए हम अपने रविदास समाज के लोगों से भी अपील करेंगे कि अधिक संख्या में उपस्थित हो।
1: जिले भर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई सड़कों पर जल जमाव और गड्ढों की वजह से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। इसके विरोध में बीते दिनों बलियापुर धनबाद मुख्य सड़क पर जेएलकेएम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गड्ढों की पूजा कर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। पार्टी के नेता आशीष महतो ने कहा कि वर्षों से सड़क बदहाल है लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन दे रहे हैं। चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बहरहाल यह स्थिति महज एक सड़क की नहीं बल्कि पूरे जिले की है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
4: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा प्रादेशिक समाचार। जिले में आजकल हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 और 42 मिनट हो चुके हैं। आइए हम शामिल होते हैं सुरों की महफिल स्वरांजलि गीत गजल के कार्यक्रम में। आज के फनकार हैं भूपिंदर सिंह मिताली सिंह।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वरांजलि गीत गजलों का कार्यक्रम। आज के फनकार थे भूपिंदर सिंह एवं मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। शीर्षक, भारत का अंतरिक्ष और उसका अवलोकन, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण के हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विज्ञान जगत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नवीन शोध चल रहे हैं या क्या उपलब्धियां रही हैं, भारत विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उससे हमारी मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ने वाला है, इन सब के विषय में हम अपने इस अंक में आपसे बात करते हैं। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उसका अवलोकन। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की शुरुआत श्रोताओं 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ हुई थी। शुरुआती वर्षों में देश के दक्षिणी शोर पर तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के साथ वायुमंडलीय अध्ययन पर काम किया गया। 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से नए स्तर पर पहुँचाया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करना था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेषता राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित संसाधन सर्वेक्षण प्रबंधन, उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह मौसम विज्ञान, अनुप्रयोगों और अन्य उभरते क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर तरीके से परिचालन, अंतरिक्ष सेवाएं स्थापित करना और इन क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान और विकास करना है। अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के साथ साथ अनुसंधान और विकास के लिए भी जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। और अंतरिक्ष सुधारों के बाद इसकी भूमिका और इसके दायरे को बढ़ाया गया है, जिसमें पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए उपग्रहों का स्वामित्व और उपग्रह सेवाएं प्रदान करना, उपग्रह और प्रक्षेपण वाहन बनाना, प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र देश में निजी संस्थाओं की गतिविधियों की अनुमति देने और उनकी देखरेख करने के लिए DOS के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। श्रोताओं, इसरो के परिचालन प्रक्षेपण यान PSLV, GSLV और GSLV-MK3 पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करते हैं। छोटे उपग्रहों की ओर वैश्विक बदलाव को पूरा करने के लिए समर्पित एक छोटा लॉन्चर SMLV विकासाधीन है। चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के दो लॉन्च पैड देश को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता भी प्रदान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम अपने भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के विकास में लगा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 3, सौर अन्वेषण मिशन आदित्य L, अंतरिक्ष वेधशाला एक्सपोसैट। ये सब वर्तमान में प्रचालनरत मिशन एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। गगनयान का कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ऑर्बिटल मॉड्यूल और भारतीय मानव रेटेड लॉन्च वाहन का उपयोग करके मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने के लिए एक मिशन शुरू करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को पूरा करना है। मानव युक्त उड़ान से पहले 2 मानव रहित उड़ानों की योजना भी बनाई गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम और पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और जिसमें कई व्यवसायों के निवेश के लिए अवसर हैं। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दृष्टि से भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक रूप से घरेलू निजी कंपनियों ने वित्त पोषण जुटाया है। इसरो ने संयुक्त मिशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशन है और इसरो प्रक्षेपण यान और इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर जैसी नई तकनीकों के विकास पर भी काम कर रहा है। इसरो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन और उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करता है और भविष्य में इन सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसरो ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रों, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को भी बिना किसी न्यूनतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह से उत्पन्न डेटा को उधार देने का भी फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले वर्षों में लागत प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है। स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अभिनव समाधान प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। वे नए विचार और तकनीकें ला रहे हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद कर रहे हैं। इसरो के साथ ये काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी और उद्यमशीलता की विशेषज्ञता मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य आशाजनक है, जिसमें कई प्रमुख पहल और परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से निरंतर समर्थन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए भारत तैयार है। तो श्रोताओं, आज हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में इस कार्यक्रम विज्ञान जगत में चर्चा की, और अब आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए हमें दीजिए।
0: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, भारत का अंतरिक्ष और उसका अवलोकन, संकलन निर्वाचन विचार मीनाक्षी कर्ण के थे। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुनेंगे रात्रि 8:45 पर इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

साप्ताहिक की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई।
उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग

विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से

0: विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित पर। सभी आपने सुना राधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म राधा का संगम, अनु मलिक के संगीत, हसन जयपुरी के बोल। अब आइए सुनते हैं जतिन ललित के संगीत, समीर के बोल हैं, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्तपर से, खुशी पलों में आप हम जुड़ रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा से हिंदी समाचार के लिए। और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
3: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह नगर स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम है। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
4: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडम्र मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
6: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद न्यूज एट 9। हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
1: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है. इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है.
7: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है. जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा. लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा. और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया.
7: Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Nav Kranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
8: Today, an agreement was signed between our umbrella organization and the National Forensic Sciences University, NFSU. Through this agreement, the umbrella organization will work to provide all these facilities at a very low cost, even to the smallest bank branches. This will cover cyber security, digital forensics, employee training and research. All these facilities will be made available together through a single bank in a box solution.
2: A bank in box se ho jayegi.
7: The Home Minister also launched a security operations center which will provide round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. The government today announced a series of strategic memoranda of understanding, MOUs, with key industry leaders and ecosystem enablers, which are cash prepayments, Darwin Dynamics, Vultra India, Cars 24 and the Council for Startup India, CSI. The MOUs have been signed by the Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion and Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with cash prepayments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Ultra India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure available to DPIIT recognized startups. Furthermore, the DPIIT has partnered with Cars 24 Services Private Limited to foster innovation, entrepreneurship and capacity building in India's mobility and automotive technology ecosystem. Meanwhile, the MOU signed with the Council for Startup India aims to strengthen support for DPIIT recognized startups by facilitating access to investment, strategic partnerships, mentorship, leadership development and global markets. India has achieved a major milestone in its clean energy journey, with the country crossing 300 gigawatts of installed non-fossil fuel-based electricity capacity. In a social media post, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi highlighted that India's renewable energy capacity has surged by 400% over the last 12 years. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. The Shiromani Akali Dal, at a meeting of its senior leaders in Chandigarh, had made this demand in another message. While replying to a post by Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, Mr. Rijiju said to implement women's reservation by the next general elections in 2020 and the delimitation exercise based on the latest available census figures should be taken up at the earliest. The students' agitation in Jharkhand over alleged irregularities in JPSC, JSSC and other competitive examinations is intensifying. The matter has now reached the Supreme Court, while talks between the state government and various student organizations are underway. More from our correspondent.
9: A petition has been filed in the Supreme Court seeking cancellation and reconduct of the 14th JPSC preliminary examination over alleged irregularities. The petition seeks an independent inquiry committee headed by a retired judge and an independent audit of the entire examination process, from question paper preparation to OMR scanning, coding, evaluation and preparation of results. Meanwhile, students protesting for several days at the Jaipal Singh Munda Stadium continue to press for their demands. The protesters say that verbal assurances will not be enough and that the agitation will continue until concrete results are visible. The state government has intensified its consultations with various student organizations. After holding talks with representatives of several organizations, the government has said that it will consider their demands and suggestions before taking further decisions. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests, while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a Memorandum of Understanding, MOU, aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Speaking to reporters in the Oval Office, Mr. Trump reiterated that the U.S. remains committed to preventing Iran from acquiring a nuclear weapon. He also voiced optimism over ongoing negotiations concerning the Strait of Hormuz, one of the world's most important maritime routes for global oil and goods shipments. The MOU signed in June this year provided a 60-day window for the two countries to hold negotiations and work towards a lasting peace agreement. The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal today under India's BRICS chairship. The meeting adopted the Bhopal Declaration aimed at strengthening cultural cooperation among BRICS member and partner countries. Representatives from 14 countries, including 10 BRICS members and 4 partner countries, took part in the meeting. The delegates discussed ways to promote cultural and creative industries. They also focused on creating more opportunities for artists. The meeting discussed using digital platforms to help artists reach wider markets. Protecting and restoring cultural heritage was another key focus. Chief Justice of India Suryakant has stressed that justice must travel to the citizen rather than expecting citizens to travel to the justice system. He was addressing the inaugural session of the West Zone Regional Conference of the National Legal Services Authority in Indore today. The CJI said, meaningful access to justice requires legal institutions to reach people who are unable to approach them. The Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall along over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of Northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands tomorrow. Parts of New Delhi witnessed heavy rainfall today. Flood threat is mounting in Odisha with rising Baitarni and Salandi rivers triggering fresh concerns in Bhadrak and other low-lying areas. We have more from our correspondent.
6: Odisha is witnessing another spell of heavy rain with a low pressure area formed over southwest West Bengal and adjoining North Odisha under the influence of an upper air cyclonic circulation. In Bhadrak, rising levels of Salandi and Baitarni rivers have renewed flood fears. Several low-lying areas and villages in Bhadrak and Tihidi block remain inundated while water has entered vulnerable and previously bridged points along the Salandi and Nalia River. In Katak, swollen Sapua and Kantia rivers have affected movement on parts of the old Katak-Sambalpur road with agricultural fields waterlogged. Heavy rain has disrupted normal life in several parts of the state with road communication cut off in many villages of Kuchinda in Sambalpur district and Hatadi in Keunzar district, besides several other areas. Authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
7: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both Lohar Tal and Pahalgam routes from August the 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chu Mitei won a total of three medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bags two medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की ज़रूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवीत पहुँचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तईं अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में स्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की कहान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद कफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर

0: भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। असान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की किहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि किहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवीत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: भीमसेन बाबरा ने जहां कुछ बड़े ही संवेदनशील गाने लिखे तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े ही मस्ती भरे गाने भी लिखे।
1: दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
0: उन्होंने दोस्ती का फलसफा भी हमें समझाया।

0: के जी मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साकी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी। और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलचन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था। तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। एक गीत लिखा, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ, उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला, एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले, ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले, झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट सा पॉकेट मार सा लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई, ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले, हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे। तो बोले, अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था
2: मैं क्या जानू।

सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के लिए।

0: 1968 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बागरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 10 बज चुके हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक श्रोताओं बने रहे हमारे साथ शुरू की महफिल में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की पहली पेशकश आपने सुनी फिल्म एतवार के गाने को, सुजाता भट्टाचार्य कुमार सानू की आवाज़ में, राजेश रोशन के संगीत और नासिर फर्ज के

अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन के इस गाने को। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे। आर डी बर्मन के संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म।

नदीम श्रवण के बोल समीर के, नदीम श्रवण के संगीत और समीर के बोल थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:24 और 9 सेकंड हो चुके हैं। अभी ये सफ़र यूं ही नहीं ख़त्म होने वाला है, 11 बजे का सफ़र है। तो दो श्रोताओं बने रहें आप हमारे साथ अभी FM 103 MHz पर, और सुनते रहें खूबसूरत फिल्मी सफ़र में। मैं हूँ आपके साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक। और अब आइए सुनते हैं फिल्म किशन कन्हैया के इस गाने को। साधना सरगम अमित कुमार की आवाज़ में, अनवर सागर के बोल हैं, राजेश रोशन के संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म आज के अर्जुन के इस गाने को लता मंगेशकर, सरबीर कुमार की आवाज़ में, बप्पी लहरी के संगीत और अनजान के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम लौटते हैं कुछ ही पलों में।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म के गाने को आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, अनु मलिक के बोल और इसके शर्मा के संगीत थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:53 और 13 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म बागवान के गाने को। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, आदेश श्रीवास्तव के बोल है समीर के संगीत, आदेश श्रीवास्तव के संगीत समीर के बोल।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आइए सुनते हैं आखिरी फरमाइश लाल दुपट्टा मलमल का अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। आनंद मिलिंद के संगीत और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम समाप्त करते हैं। कुछ ही पलों में रात 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार 11:05 में अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है,

लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।